मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026 ईस्वी। सुबह के 5:52 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। खेत खलिहान में सुनिए श्रीनिवास साहब की वार्ता, गुलदाउदी की खेती।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आप गुलदाउदी की खेती करके लाभ उठा सकते हैं। गुलदाउदी के बोने का समय जो है वो चल रहा है, इस समय आप इसकी खेती कर सकते हैं। जहां तक किस्मों का सवाल है तो किस्मों को कई भागों में बांटा गया है। गुलदाउदी की सितंबर अक्टूबर में जो फूल देने वाली किस्में हैं उनमें सीन, कुंजी, बोटेट्रस, शरद बहार, शरद तारिका महत्वपूर्ण है। नवंबर में फूलने वाली जो किस्में हैं उसमें मेगामी, बमन, ननाको, अप्सरा प्रमुख हैं। दिसंबर में जो फूल देने वाली किस्में हैं उनमें पैरागॉन, लिलीपुट, मिली सीता और रीता प्रमुख हैं। कैसे आप गुलदाउदी को लगाएंगे इसके बारे में भी जान लें तो गुलदाउदी में प्रवर्धन तीन प्रकार का होता है। बीज द्वारा गुलदाउदी का प्रवर्धन कई किस्मों को उगाने में किया जाता है। बीजों को गमलों या पूर्ण रूप से तैयार क्यारियों में बोया जाता है, फिर पौधे तैयार किए जाते हैं। अंतःभूस्तारी द्वारा भी जब पौधे में पुष्पण समाप्त हो जाए तो फूल वाले भाग को काट देते हैं और पौधे को आंशिक छाया में रखा जाता है और खाद तथा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ऐसे पौधे के तना भाग से अनेक भूस्तारी निकलते हैं जिन्हें मूल पौधे से अलग करके लगा सकती हैं, यानी कि पौधे को कई भागों में काट करके आप लगाते हैं। कलम द्वारा भी आप गुलदाउदी लगा सकते हैं। फूल देने के बाद पौधे को सुरक्षित रखते हैं और फिर बढ़ने वाले भाग से अनेक कलम काटते हैं और उनकी बुआई करते हैं। ऐसे पौधे को की देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। गुलदाउदी की खेती गमलों और क्यारियों दोनों में की जाती है। क्यारियाँ ऊँची बनानी चाहिए, जल निकास का उचित प्रबंध रखना चाहिए। मिट्टी की जुताई एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 जुताइयां देसी हल से करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद क्यारियां बनाकर पौधे की रोपाई करें। अंतिम जुताई के बाद मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट एवं बालू मिला दें। क्यारियों में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जब आप गमले में पौधे लगाते हैं या खेत में पौधे लगाते हैं तो पोषक तत्व जो है वो कितनी मात्रा में चाहिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रति जो पोषक तत्व है वो 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देने की आवश्यकता होती है। गमलों में उगाई गई गुलदाउदी को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे यदि क्यारियों में उगाया जाए तो वर्षा ऋतु में महीने में एक बार, जाड़ों में 15 दिन में एक बार और गर्मी में सप्ताह में एक बार सिंचाई करनी चाहिए। जल निकास का भी उचित प्रबंध रखना चाहिए, लेकिन यदि वर्षा ऋतु में वर्षा हो जाए तो सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। गमले और क्यारियों में लगाए गए पौधों को सहारा देना आवश्यक होता है। बांस की खपच्चियों से या अन्य लकड़ी के टुकड़ों से गुलदाउदी के पौधे को सहारा आप देते रहें। गुलदाउदी से यदि अधिक फूल प्राप्त करना हो तो पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं। उससे बढ़वार के समय दोंजियां जो है अधिक निकलती है और फूल भी अधिक लगते हैं। यह पौधा रोपने के 10 से 15 दिन बाद आपको करना होता है। आप देखेंगे कि गुलदाउदी के पौधे पर कुछ रोग भी होते हैं जिसमें काला धब्बा रोग प्रमुख है। कवक से फैलने वाला यह रोग है। इस रोग में पौधे की पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ते हैं जिसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं। अंत में पौधा जो है वो सूख जाता है। तो इसके लिए डायथेनियम 45 दवा का छिड़काव करें। चूर्णिल आसिता रोग भी कवक से फैलने वाला रोग है। इसमें पत्तियों पर सफेद पाउडर फैल जाता है। तो गुलदाउदी के पौधे में जब यह रोग हो जाए तो 0.5% कैराथिन के छिड़काव से यह रोग खत्म होता है। फूल सड़न रोग भी होता है। इस रोग में पुष्प भूरे रंग के हो जाते हैं और फूल सड़ जाते हैं। डायथेनियम 45 का छिड़काव इस रोग को रोकता है। माहू कीड़ा और लाल हेयरी कैटरपिलर भी लग जाता है। तो यदि आप खेत में बुआई किए हैं गुलदाउदी की तो उसके लिए आप दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं जैसे मेटासिस्टॉक है और अन्य दवाएं हैं। लेकिन यदि आप गमला में प्रयोग बुआई किए हैं तो वहाँ पर काफ़ी सावधानी की आवश्यकता होती है और आपको गुलदाउदी के पौधे में जो है ये सुरक्षित कीटनाशियों का प्रयोग या प्राकृतिक कीटनाशियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है।
0: खेत खलिहान में अभी आपने सुना श्रीनिवास साहब की वार्ता, गुलदाउदी की खेती। हम आकाशवाणी भागलपुर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है चिंतन मनन।
3: एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। शिष्य आनंद समीपस्थ सरोवर से पानी लाने गए। उन्होंने देखा कि कुछ समय पूर्व ही वहाँ से बैलगाड़ियाँ गुजरी थी तथा बैलों ने सारा जल गंदा कर दिया है। वे वापस लौटे और बुद्धदेव से बोले, यहाँ का जल गंदा है। बुद्धदेव ने दोबारा उसी सरोवर से जल लाने उनको भेज दिया। आनंद जब वहाँ गए तो देखा कि जल अभी भी साफ नहीं हुआ है। इसी तरह वापस लौटने और सरोवर तक जाने का क्रम 3 बार चला। चौथी बार जब आनंद वहाँ गए तो देखा कि मिट्टी और सड़े गले पत्ते नीचे बैठ चुके हैं तथा पानी आईने की तरह साफ चमक रहा है। फिर आनंद ने जल लाकर बुद्धदेव की प्यास बुझाई। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, हमारे जीवन रूपी जल को भी कुविचार रूपी बैल प्रतिदिन गंदा करते रहते हैं और तब हम जीवन से पलायन करने की सोचते हैं। हमें भागना नहीं चाहिए बल्कि मन रूपी झरने के शांत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए धीरज की आवश्यकता है, तभी सब कुछ स्वच्छ दिखाई देगा। सच है कि हमें अपने जीवन में सदा सुविचारों को ही स्थान देना चाहिए। सुखमय जीवन के लिए कुविचारों से लड़ाई आज से और अभी से प्रारंभ करने की ज़रूरत है। किसी कार्य को करने से पहले ये विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि वो हमारी गरिमा के अनुकूल हैं या नहीं। विचारों से मनुष्य की अच्छाई बुराई जानी जाती है। असफलता या तिरस्कार मिलने पर भी दुखी होने की अपेक्षा अपनी खामियों को ढूंढकर सृजनात्मक विचारों के साथ नए उत्साह से अगला कदम बढ़ाना ही श्रेयस्कर होगा। अपने हृदय से भय और कुविचारों को बाहर निकाल फेंकने वाले ही सच्चे सूरमा कहलाते हैं। बुद्ध, नानक और महावीर आदि सभी महापुरुष अपने सद्विचारों की वजह से ही अमर हैं। इसलिए जीवन में कुत्सित विचारों को पनपने नहीं देना चाहिए। जिनके विचार और चिंतन शुभ होते हैं वे ही परम सत्ता के कृपा पात्र होते हैं। विचारोत्सर्ग ही सौंदर्य का वास्तविक श्रृंगार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, न धन का मूल्य है, न नाम का, न यश का, न विद्या का, केवल सद्विचार ही कठिनाई रूपी पत्थर को भेद सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि मानव में मानवता आचरण से होती है, हैसियत से नहीं। भगवान विचार देखते हैं, वसीयत नहीं।
2: अभी आप सुन रहे थे चिंतन मनन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए देश वंदना से।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अनूप जलोटा के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। स्वास्थ्य चर्चा, इसमें सुनिए डॉक्टर सुरेश प्रसाद से ली गई भेंट वार्ता। विषय है बेहतर स्वास्थ्य के लिए सलाह। भेंट करता है सचिन कुमार।
1: नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आप जैसा जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहने पर ही हम अपने सारे काम बेहतर ढंग से कर सकेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब ये जानें कि बेहतर स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाए, और इस विषय पर सलाहकार के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुरेश प्रसाद को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ हम अपने स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सके?
2: सबसे पहले तो समय पर सोना और समय पर सुबह जागना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग सुबह में कम से कम 3-4 किलोमीटर टहलें
1: जी,
2: मॉर्निंग वॉक करें, व्यायाम करें, कुछ प्राणायाम करें
1: जी,
2: इससे अच्छा रहता है स्वास्थ्य
1: जी। डॉक्टर साहब, क्या खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है?
2: खान पान तो बहुत ही जरूरी है, संतुलित आहार होना चाहिए
1: जी।
2: ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है और कम खाने से भी कमियां होती है जिसके चलते बीमारी हो जाती है। संतुलित आहार बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और समय समय पर खाएं
1: जी।
2: हम लोग तरफ से सलाह यही है कि छोटा स्मॉल मील्स ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मतलब थोड़ी थोड़ी खानी है और बहुत कस के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है और रह के 4-6 घंटे पर कुछ कुछ खाते रहना है
1: जी। जी, तो आपने कहा कि संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक संतुलित आहार हम किसे मानेंगे?
2: हम लोग के आहार में 3 तरह की चीज होती है
1: जी,
2: कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसको वसा कहते हैं, और प्रोटीन
1: जी।
2: तीनों का अपना अपना महत्व है। प्रोटीन खाने से हम लोगों को शरीर में मांस वगैरह ऐसे हड्डी वगैरह बनती है, बढ़िया से बनती है
1: जी।
2: वसा से शक्ति मिलती है
1: जी।
2: और ये कार्बोहाइड्रेट जो है उसे हम लोगों को मेटाबॉलिज्म के चलते आपको ताकत कैलोरी मिलता है। तीनों अपने अपने जगह पर है, लेकिन किसी का भी ज़्यादा उपयोग करने से गड़बड़ी होती है। ज़्यादा वसा खाएंगे, फैट खाएंगे तो मोटापा आ जाएगा, मोटापा 10 तरह की बीमारियाँ लेके आ जाएगा
1: जी।
2: और ज़्यादा यदि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो एक बहुत ज़रूरी है इसमें डायबिटीज़ या मधुमेह होने का, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल जिसमें कहते हैं खाते हैं
1: जी जी,
2: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब भोज्य पदार्थ खाने से उसमें डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि व्यायाम और सुबह टहलना ये भी ज़रूरी है, तो ये किस प्रकार से फ़ायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य?
2: इसके ऐसा करने से एक तो वज़न आपका सही रहेगा, ओवरवेट नहीं होंगे, ज़्यादा वज़न होने से 10 तरह की बीमारियाँ होती है उससे बचेंगे। और उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सब जो होते हैं इस सब में आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, इससे यूजली उससे बचाव होगा
1: जी। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि नशा, तंबाकू, धूम्रपान ऐसी कुप्रथाएं बहुत प्रचलित हो चुकी है, तो ये हमारे शरीर या स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं?
2: नशा तो सारे शरीर पर असर करती है, उसमें सबसे पहले यकृत या लीवर जिसको कहते हैं उसको बर्बाद करता है
1: जी,
2: फिर भूख मिटा देगा, आपको कमजोरी कर देगा। धूम्रपान करने से भी लंग का कैंसर होता है
1: जी,
2: या कोई कंठ का कैंसर होता है, और तंबाकू जो है तो बहुत ही खराब चीज़ है, इससे कैंसर होते हैं, जैसे गले के कैंसर हो जाएंगे, जीभ के कैंसर हो जाएंगे, इस तरह के बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं
1: जी। यानी कि तंबाकू और अन्य नशीली पदार्थें किसी भी रूप में फ़ायदेमंद नहीं है हमारे शरीर?
2: बिल्कुल ही नहीं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि बहुत कम पानी पीते हैं, तो कम पानी पीने की वजह से कौन कौन सी हानि हो सकती है?
2: पानी कम पीने से जब बहुत कम हो जाएगा तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है
1: जी,
2: इसके चलते उसको पानी चढ़ाना पड़ता है। और दूसरी बात है, ज़्यादा पानी पीने से किडनी द्वारा सारा चीज़ जो गंदा चीज़ है वाश आउट होता है पेशाब के रास्ते से
1: जी।
2: कम पानी पिएंगे तो पूरा फ्लश आउट या निकलेगा नहीं, तो शरीर में गंदगी रह जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां पैदा करेंगी। अच्छी तरह से पानी पिए, 5-6 गिलास 10 गिलास रोज
1: जी जी,
2: तो उसमें सारा जिसको कहता है कि वाश आउट हो जाना या बाहर चले जाना, बढ़िया से धुल के निकल जाना गंदगी, तब आपको अच्छा रहेगा
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन बिताने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें?
2: सबसे पहले आहार, उसके बाद व्यायाम
1: जी,
2: घूमना, नशा से दूर रहना, तंबाकू से दूर रहना, धूम्रपान से दूर रहना, ये बहुत ज़रूरी है।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना डॉक्टर सुरेश प्रसाद से ली गई भेंट वार्ता। विषय था बेहतर स्वास्थ्य के लिए सलाह। भेंट करता थे सचिन कुमार। ये आकाशवाणी भागलपुर है, कुछ ही पलों में आप रामचरित मानस गान सुनिएगा।

अभी आपने सुना रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे राजन मिश्र, साजन मिश्र तथा अनुराधा पौडवाल। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें कुछ जानकारियां हम आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे आप सुनते हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम। इसके अंतर्गत रसरंग में आज के कलाकार होंगे अभिजीत आनंद। 7:20 पर हिंदी वार्ता में विजय कुमार धावक की वार्ता होगी आधुनिक भारत में गांधी जी की प्रासंगिकता। 7:30 फिल्म संगीत 9:06 पर कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 सुगम संगीत के कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। 10:00 कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 लोकगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे विश्वनाथ ठाकुर। दिन के 11:00 आप सुनते हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। 12:00 बहनों का कार्यक्रम नारी लोक, प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। दिन के 1:00 और 1:20 पर लोकरंग कार्यक्रम के गायक कलाकार होंगे नवल किशोर नबीना घरांगन। इसे आप सुन सकेंगे 1:30 पर। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। चित्रपट से फिल्मी गानों के इस कार्यक्रम को हम आपको सुनवाएंगे 2:30। 3:00 बांग्ला गान और 3:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 3:25 से संध्या 5:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। शाम 5:00 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युववाणी। प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री, इसे फिर से सुन ले, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 फिल्म संगीत। 6:00 आप सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। लोकगीत प्रसारण होगा 7:10 पर। कलाकार होंगे शिवशंकर कुशवाहा एवं साथ ही संध्या 7:52 पर सुरलहरी कार्यक्रम। कलाकार होंगे ध्रुव कुमार। 8:00 फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 8:15 पर साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 9:30 पब्लिक स्पीक और 10:00 शास्त्रीय संगीत। इन कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। 10:30 कार्यक्रम होगा पसंद आपकी।

कार्यक्रम विवरण में अभी आपने आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारियां प्राप्त की। ये आकाशवाणी भागलपुर है। श्रोताओं, संस्कृत में समाचार के लिए आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। पेश है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिजीत आनंद के गाए गीत व भजन, इसके अलावा हिंदी वार्ता और साथ ही साथ हम आपको लिए चलेंगे फिल्म संगीत की महफिल में। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करें तुलसीदास की भजन रचना से। गायक कलाकार हैं अभिजीत आनंद।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: अब आइए सुनते हैं एक गीत। गीतकार हैं बशीर बद्र।

0: बताओ, अभी आपने सुना अभिजीत आनंद का गाया गीत व भजन, और इसी क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आधुनिक भारत में गांधी जी की प्रासंगिकता विषय पर विजय कुमार धावक की वार्ता।
1: गांधी जी मात्र हार मांस के वक्ते ही नहीं थे, बल्कि वे एक संपूर्ण विचारात्मक आंदोलन थे। महात्मा बुद्ध के बाद शांति के वे ऐसे मसीहा थे जिन्होंने सत्य अहिंसा के व्यापक महत्व को समझा और अपने में आत्मसात कर क्रियान्वित भी किया, जैसा वे कहते करके भी दिखाते थे। गांधी जी ने आम जनता को करीब से देखा और उसकी भावनाओं को समझा परखा, तब कहीं जाकर विश्व शांति का आह्वान किया। वाईजी कृष्णमूर्ति ने उनका मूल्यांकन करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी केवल संत ही नहीं थे, बल्कि वे महान क्रांतिकारी भी थे। काठियावाड़ की रियासत पोरबंदर के दीवान करमचंद गांधी जी को 2 अक्टूबर 1869 के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पारिवारिक प्यार से मोनिया के नाम से पुकारे जाने वाले मोहनदास आने वाले कुल के विश्वविख्यात सत्य अहिंसा शांति के अग्रदूत होंगे, उस समय यह कौन जानता। बचपन में ही भगवत गीता व धार्मिक वातावरण के साथ श्रवण कुमार की प्रीति भक्ति और सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक पुस्तकों का उनके शिशु मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बैरिस्टर बनने के बाद गांधी जी में काफ़ी परिवर्तन हुआ था। आगे चलकर वही गांधी जी मानव उत्थान के लिए शांति का संदेश देने में कितने निपुण सिद्ध हुए। आज भी विश्व में अन्याय और शोषण के विरुद्ध गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। नैतिक संघर्ष पर चलने वाली पार्टियां सभी अहिंसा की पक्षधर हैं। गांधी जी की यही प्रासंगिकता है। गांधी जी की आजीवन यही मान्यता रही कि अपनी तपस्या के बल से ही दूसरों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी के इस अफ्रीकी सत्याग्रह में कालेन वाक, श्रीमती पोलक एवं स्लेसिन तीन विदेशी मित्रों का भरपूर सहयोग रहा। गांधी जी कभी दूसरों को पराजित करके स्वयं विजयी नहीं बनते थे, बल्कि उसे प्रभावित करके अपना बना लेते थे। सन 1919 से लेकर 1948 में अपनी मृत्यु तक भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महान ऐतिहासिक नाटक में गांधी जी की भूमिका मुख्य अभिनेता की रही। गुरुदेव ने ही गांधी जी में महात्मा के दर्शन किए और उन्हें सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किया। पूना की साबरमती जेल में गांधी जी के आमरण उपवास को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने फलों का रस पिलाकर तोड़ते हुए गीतांजलि का प्रिय प्रार्थना गीत सुनाया था। जीवन जखन सुकाए जा करुणा धराए ऐसो। जनवरी 1928 में गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व संघ के सम्मुख भाषण देते हुए कहा था, लंबे अध्ययन और अनुभव के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पृथ्वी पर सभी धर्म सच्चे हैं। सर्वप्रथम 1919 में भारत लौटने पर गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के साथ चंपारण और खेरा के कृषकों और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। सन 1920 से 1947 तक का समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का गांधी युग कहा जाता है। अंग्रेजों के विश्वासघात ने गांधी जी को 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ने को विवश कर दिया। सन 1930 में गांधी जी ने पुनः स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रदर्शन कर दिखाया। 26 जनवरी 1930 को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। दांडी यात्रा में 24 दिनों तक लगातार पैदल चलकर समुद्र के पानी को सुखाकर बनाया हुआ थोड़ा सा नमक उठा लेने की बात वायसराय को नाटकीय और मूर्खतापूर्ण लगी होगी, पर धोतीधारी इस महामानव के इस नाटकीय कार्य से पूरे देश में खलबली मच गई। नमक कानून के उल्लंघन की यह प्रतीकात्मक घटना जन स्फूर्ति के लिए रामबाण सिद्ध हुई। गांधी जी जो पहले ईश्वर सत्य है कहते थे, अब सत्य ईश्वर है कहने लगे थे। उनके आश्रम में वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पढ़ाई जान रे, तथा अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, जैसे भजन नित्य प्रति गुंजित होते थे। उनका सेवाग्राम तो श्रम की महत्ता का राष्ट्रीय तीर्थ साबित हुआ है। गांधी जी के अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा है। किताबें पढ़ने से ज़्यादा चिंतन की जरूरत होती है। अगर किसी चीज़ का उत्तर जानना चाहते हो तो उसे ठीक से समझ लो। सब मिलकर भारत की राष्ट्रीयता की बात करें। सामुदायिक प्रार्थना गांधी जी ने राष्ट्रीयता से जोड़ी। जिस भूभाग में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ रहने का नित्य संकल्प करते हैं वह राष्ट्र बनता है। गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज़ादी के आंदोलन में सारे लोगों को एक साथ जोड़ा। सारे लोग भाई बहन बनकर आज़ादी के आंदोलन में शरीक हुए। किसी ने जात पात नहीं देखी आज़ादी के आंदोलन में। गांधी जी के कारण इस देश के आम आदमी आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए।

0: इसलिए गांधी जी ने कहा कि झोली लाऊंगा, झंडा लाऊंगा और बात कही थी झाड़ू लाऊंगा। झंडा राष्ट्र की अस्मिता का वह प्रतीक है। झंडा तिरंगा है, इसमें तीन रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। चरखा यह बताएगा कि प्रतिष्ठा श्रम की होगी, प्रतिष्ठा मेरे देश में श्रम करने वालों की होगी। इसलिए गांधी जी अस्मिता का प्रतीक झंडा तिरंगा लाए और झोली हमारे हाथ में दे दी, झाड़ू हमारे हाथ में दे दिया। कभी किसी ने सोचा था कि झाड़ू क्रांति का प्रतीक बन सकता है? जातीयता खत्म करने के लिए हरिजन सेवा की बात कही। हरिजन सेवा करने का दायित्व सवर्णों का है। उस सेवा से अस्पृश्यता और जातीयता की भावना समाप्त होगी। यह सेवा की भावना गांधी जी ने रखी। ऊपर बैठे लोग अगर ठीक से बर्ताव नहीं कर सकते तो उनको उनके पद से नीचे लाने की ताकत जब आम आदमी में पनपती है तब स्वराज वाली बात होती है। समुद्र में जैसे तरंगें निकलती हैं वैसा हमारा स्वराज होगा। इस दुनिया में इसका मूल कारण क्या है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कार्य कारण का भाव नई चेतना बुद्ध ने सारे विश्व को दिया है। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने आधुनिक राजनीतिक समाज के संदर्भ में समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए समस्याओं के कारणों को खोजना और उस कारण का निवारण करने, समस्या का समाधान करने की एक नई दिशा गांधी जी ने हमें दिखाई। गांधी जी के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है और अटूट श्रद्धा है। गांधी जी के जो उपदेश हैं उनको हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। 5000 वर्ष में भारत के इतिहास में गांधी जैसा कोई दूसरा महापुरुष नहीं हुआ है। बुद्ध और जैन दोनों अहिंसावादी रहे हैं। जैन ने भी अहिंसा परमो धर्म नाम से प्रसारित किया। हमारे जीवन में प्रासंगिक चाहता हिंद स्वराज है। हम राजनीति में, राष्ट्र के आंदोलन में जिसमें हम लोग लगे हुए हैं वहाँ पर कैसे अहिंसा का प्रयोग हो सकता है यह हिंद स्वराज बताता है, तो हमारे लिए यह ज़्यादा प्रासंगिक हुआ। जिस बात में हम लोग उलझे हुए हैं और जिस बात से हम ग्रस्त हैं और जिसका हम समाधान खोज रहे हैं वह हिंद स्वराज में मिलता है तो हमारे लिए प्रासंगिक है। वे हमको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी देते हैं। हम हिंसा छोड़ने की स्थिति में नहीं हों तो अपने राष्ट्र के आंदोलन को ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हिंसा छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि अपने न्याय के लिए कुछ न करें, एकदम चुप होकर बैठ जाएं। गांधी विचार हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है और प्रासंगिक भी है। अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो गांधी जी का ही एक मार्ग है। गांधी जी सत्य और यथार्थ की बात करते हैं। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा था, मैं चाहता हूं कि हमारे देश का राष्ट्रपति एक किसान हो। 29 जनवरी को गांधी जी ने अपनी भतीजी पौत्री मनु से कहा था, यदि किसी ने मुझ पर गोली चला दी और मैंने उसे अपनी छाती पर झेलते हुए होठों से राम का नाम ले लिया तो मुझे सच्चा महात्मा कहना। और यह कैसा संयोग था कि 30 जनवरी 1948 को उस महात्मा को वनवांछित मृत्यु प्राप्त हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने ठीक ही कहा था, सारा संसार उनके जीवित रहने से संपन्न था और उनके निधन से दरिद्र हो गया है। आज वास्तव में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में गांधी जी की प्रासंगिकता बढ़ गई है।
1: आधुनिक भारत में गांधी जी की प्रासंगिकता, इस विषय पर आप सुन रहे थे विजय कुमार धावक की वार्ता। और श्रोताओं, अब वादे के मुताबिक हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले स्तंभ पर और सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, फिल्म संगीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रेल संबंधी सूचना सुनिए। 15,553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस अपने सही समय पर खुलेगी, जिसका सही समय है 7:50। 12,368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसके आने का समय है 8:15, सही समय पर आने की सूचना मिली है। 13,403 रांची भागलपुर बनांचल एक्सप्रेस अपने सही समय से चल रही है, जिसका आने का समय है 9:00। 12,253 यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस अपने सही समय पर खुलेगी, जिसका सही समय पर आएगी, जिसका सही समय है 9:20 पर। और भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस 12,367 अपने सही समय 11:55 पर खुलेगी।

हम अपने दोस्तों को एक छोटी सी जानकारी देते हैं। BSNL 100 पदों पर भर्ती करेगी, इंजीनियरिंग करने वाले को है मौका। भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन के लिए विंडो 4 जुलाई से 11 जुलाई तक खुली रहेगी।

0: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, ये आकाशवाणी भागलपुर है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्र

0: भाजपा की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSSC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
5: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
6: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
7: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता करने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 011-23-7117, 011-23-7116 और 011-23-31-4444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish AFIH Pro League campaign on a winning note.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के

0: एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशेल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशेल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजीर आजम मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशेल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशेल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशेल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद खित्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशेल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद का भी इरादा होता है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तई अपने मुश्तरका अहद से भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमीनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ़ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनाई हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। ये ऐलान आबनाई हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू और कश्मीर, शिमाल मशरिक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जदोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज GSFC यूनिवर्सिटी में चौथी दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वजरा और आलमी सिफारतकार इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।
1: کانفرنس کا مقصد وسطی گجرات کے خطے میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اس دو روزہ کانفرنس میں 30 سے زیادہ سیمینار منعقد کیے جائیں گے جن میں جاپان، سنگاپور، متحدہ عرب امارات، یوکرین اور روانڈا سمیت شراکت دار ملکوں کے 151 ماہرین اور مندوبین شرکت کریں گے. مرکزی گجرات کی اقتصادی ترقی پر مرکوز اس کانفرنس میں ملک کے لیے تیار شعبوں پر توجہ دی جائے گی جن میں سیمی کنڈکٹر، لاجسٹکس، ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن، کوانٹم ٹیکنالوجی، زراعت، خلا، دفاع اور مصنوعی ذہانت کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جائے گی. 150 سے زیادہ اسٹالز پر مشتمل اس بڑی نمائش میں علاقائی ایم ایس ایم ایز، ترقی یافتہ ٹیک اسٹارٹ اپس اور کچھ بڑی کمپنیاں جیسے امول اور جی ایس ایف سی وغیرہ حصہ لیں گی. وڈودرا سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھیونڈی میں ایک سیشنز عدالت نے ان تین ملزموں کو 6 جولائی تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے جنہیں مہاراشٹر ٹیچر اہلیت امتحان ٹیٹ کے پیپر لیک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. تفتیش کاروں کو شک ہے کہ یہ لوگ امتحان کے بین ریاستی ریکٹ میں ملوث ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: بھیونڈی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین افشا کیے گئے ٹی ای ٹی سوال نامے کو 1,50,00,000 روپے میں بیچنے کے لیے دلی سے بھیونڈی گئے تھے. یہ پیپر اصل میں کہاں سے افشا ہوا، تفتیش کاروں نے یہ جاننے کے لیے ان لوگوں کو 10 دن کے لیے پولیس حراست میں طلب کیا ہے. پولیس اس سلسلے میں مالی لین دین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا یہ پیپر مہاراشٹر میں کسی اور جگہ بھی فروخت کیا گیا ہے. پولیس ریکٹ کے دیگر ارکان کی بھی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پولیس افسران نے بتایا کہ اب وہ اس سلسلے میں 2 مفرور ملزمین کو تلاش کر رہے ہیں. ٹی ٹی امتحان اتوار 28 جون کو ہونا تھا لیکن اس کیس کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا. اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے ہفتے کو ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے. ممبئی سے شیلجا تیوالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین.
1: اوڈیشہ میں آج صبح لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند پوری پہنچے. آج شری جگن ناتھ مندر میں پوتر دیو سنان جاترا یا سنان جاترا روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بال بھدر اور دیوی سبھدرا کی پوتر سنان یاترا میں شامل ہونے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اوڈیشہ کے پوتر شہر پوری میں یکجا ہوئی. صدیوں پرانی روایت کے مطابق تینوں دیوتاؤں کو رسمی طور پر سنان بیڑی تک لایا گیا جہاں ویدک منتروں کے جاپ، شنکھوں کی آواز اور بھجنوں کے ساتھ انہیں سنان کرایا جائے گا. مذکورہ تہوار دیو سنان پورنیما کے پوتر موقع پر منایا جاتا ہے اور سالانہ رتھ یاترا سے قبل ان تینوں دیوتاؤں کے درشن کیے جاتے ہیں. عظیم الشان رتھ یاترا آئندہ مہینے کی 16 تاریخ سے شروع ہوگی. اس دوران سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں. آکاشوانی نیوز بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
1: بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج سکم اور مغربی بنگال کے سیلی ہمالیائی خطے میں بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے کے مطابق گجرات کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2-3 دن کے دوران جنوبی مغربی مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں. اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے کچھ حصوں، آسام، میگھالیہ، کیرلا اور ماہی میں آئندہ 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. آسام کے دھیماجی ضلع میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ جانے کے خطرات بڑھ گئے ہیں. خبریں ہیں کہ اروناچل پردیش کے پہاڑی علاقے میں گائی ندی کے بہاؤ میں عارضی طور پر رکاوٹ آ گئی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ رکاوٹ بڑے پیمانے پر زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے آئی ہے. خطے میں تودے کھسکنے کا یہ حادثہ کئی دن کی شدید بارش کی وجہ سے پیش آیا ہے. ایک رپورٹ.
2: دھیماجی ضلع انتظامیہ نے لوگوں کے لیے ایک فوری ہدایت جاری کی ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ جو پانی یہاں جمع ہو گیا ہے اگر اسے آگے جانے دیا جائے تو اچانک سیلاب آ سکتا ہے. یہاں دریا، جھرنوں، دلدلی زمینوں، پانی کے ذخیروں اور دیگر نشیبی علاقوں کے پاس رہنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ چوکن نہ رہیں. قدرتی آفت کی صورت میں بندوبست سے متعلق ضلع اتھارٹی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری کی گئی ہدایت پر سختی سے عمل کریں، مقامی حکام کے ساتھ تعاون کریں اور اگر ضروری ہو تو محفوظ تر جگہوں پر منتقل ہو جائیں. اسی دوران پہاڑی علاقوں پر موسلادھار بارش کی وجہ سے ضلع کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں اور یہاں پانی قومی شاہراہ نمبر 515 کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے. जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुल काही की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, पीएम मोदी को सेशल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ,
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय शिक्षा, अत्याधुनिक शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। श्री चौधरी ने आधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, छात्रावास और खेल सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस पहल से पटना साइंस कॉलेज का गौरव पुनर्स्थापित होगा और बिहार को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। महिला हिंसा से जुड़े मामलों के त्वरित और संवेदनशील निपटारे के लिए राज्य के सभी अनुमंडल थानों में महिला कोषांग की स्थापना की जाएगी। इन कोषांगों के माध्यम से महिला उत्पीड़न और हिंसा से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी, त्वरित कार्रवाई तथा पीड़िताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन कोषांगों के लिए महिला काउंसलरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। राज्य के 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की अब पोषण ट्रैकर के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग मुख्यालय स्तर पर पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित करेगा। कमांड सेंटर के जरिए 6 साल तक के बच्चों की पोषण स्थिति, वजन, ऊंचाई और समग्र विकास से जुड़ी जानकारी की सतत निगरानी की जाएगी। ये आंकड़े सार्वजनिक डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम लोग देख सकेंगे। बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही ऑपरेटर के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान कदाचार और गड़बड़ी के आरोप में 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार कदाचार के मामलों में कुल 17 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सहरसा में पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं, ब्लैंक चेकबुक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के आधार पर किशनगंज, गया, भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। वहीं दरभंगा के लहरियासराय स्थित परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के आरोप में एक महिला अभ्यर्थी और उसके भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के 54,14,000 से अधिक बेरोजगारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें लगभग 26,67,000 सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पंजीकृत युवाओं में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। रोजगार की तलाश करने वालों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्रीधारी भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकारी पेंशन भोगियों को अतिरिक्त भुगतान की राशि अब बिना पूर्व सूचना के पेंशन खाते से नहीं काटी जा सकेगी। आरबीआई ने इस संबंध में सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बैंक को रिकवरी से पहले नोटिस जारी कर अतिरिक्त भुगतान का कारण, पूरी गणना और वसूली की प्रक्रिया की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नए निर्देशों के तहत पेंशन भोगियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में जहां बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। कल राज्य के 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: पूर्व मंत्री हरी सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जगदीश चंद्र की उप महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने इस नियुक्ति को सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। अपने पत्र में श्री सहनी ने कहा कि यह निर्णय वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और केंद्र सरकार की समावेशी सोच को दर्शाता है। पर्यटन विभाग की ओर से पटना के मनेर शरीफ दरगाह में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने किया। इस अवसर पर जाने माने पार्श्व गायक सलमान अली ने सूफी संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास दो चारपहिया वाहनों के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। सभी मृतक पोखरिया गांव के रहने वाले थे और गंगा स्नान के लिए सिमरिया जा रहे थे। हादसे में घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के चोल्हा टोली में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में होमगार्ड के 2 जवान घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपितों को हिरासत में लिया है। क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में बालू लदे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक दुकानदार की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में 1 ASI और 1 सिपाही घायल हो गए। सिवान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में पोखर में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई। किशोरी को बचाने के प्रयास में उसकी मां भी घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान में हुए विस्फोट और आग लगने की घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य झुलस गया। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए FSL टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में शराब लदी तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दरवाजे पर बैठी एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा जिले के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव में एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी आंख फोड़ देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के कोदरा थानाध्यक्ष नंदू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मी पर जब्त ट्रकों से बालू उतरवाने और एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र अंतर्गत टुमड़ी पुल के पास से पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 10 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास से एसएसबी और पुलिस की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 87 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध बौद्धिक विरासत का प्रतीक। हिंदुस्तान की सुर्खी है, साइंस कॉलेज में भौतिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा, मुख्यमंत्री ने पटना साइंस कॉलेज के निरीक्षण के दौरान ऐलान किया। प्रभात खबर ने पंचायत विकास दिवस की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर माह के अंतिम रविवार को साथ बैठेंगे पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण, सुलझेंगे समस्याएं। दैनिक भास्कर लिखता है, सूखा मॉनसून समय से पहले आया पर अब तक 50% कम वर्षा पानी, 6 जिलों में हुई

सामान्य या उससे अधिक बारिश। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड समस्तीपुर से गिरफ्तार। आज अखबार की सुर्खी है, भारत के क्रिकेट का काला रविवार, आयरलैंड के खिलाफ भारत ने पहली बार सीरीज कमाई, विश्व चैंपियन भारत विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशे कार्यक्रम नगमे नए पुराने।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: प्रोग्राम का अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म है क्या कहना।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम नगमे नए पुराने, और प्रोग्राम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म है आक्रमण।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत में आज के गायक कलाकार हैं शंकर मिश्र नाहर।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शंकर मिश्र नाहर को। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

प्रोग्राम का पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म थी आशा। प्रोग्राम का अगला गीत आया साबन झूम के फिल्म से, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर
2: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
1: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
2: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
2: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं,
1: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
2: कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, इस कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म है धर्मवीर।

डॉक्टर कमलेश अवस्थी अनवर और लता मंगेशकर का गाया गीत आप सुन रहे थे नसीब फिल्में। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए सलमा आगा का गाया गीत, फिल्म है निकाह।

इस आखिरी गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं लोकगीत में। आइए सुनते हैं रंजीत कुमार रंजन को। इनसे पहले सुनिए लोक भजन।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रंजीत कुमार रंजन के गाए लोकगीत, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आज़ाद का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और हंसिका पारेख ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बॉर्डर टू से। आवाजें हैं सोनू निगम, अरिजीत सिंह और साथियों की।

कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं फिल्म राजा राम का गीत, आवाजें हैं सुरेश वाटिकर और कविता कृष्णमूर्ति की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से, प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में प्रातः के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं फिल्म जगत के 80 और 90 दशक के सर्वश्रेष्ठ गायिकाओं में एक अलका याग्निक को।

0: उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की मधुर आवाज में गाने वाली, संगीत जगत पर राज करने वाली अलका याग्निक को। लगभग 4 दशक के लंबे कैरियर में अलका याग्निक ने 7 फिल्मफेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। आइए उनके बारे में कुछ जानकारी आपको बता दें। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर और माता का नाम सुब्भा याग्निक था। पिता एक सरकारी कर्मचारी थे तो माता एक शास्त्रीय गायिका थी। अलका याग्निक की संगीत यात्रा उनकी माँ के मार्गदर्शन में शुरू हुई। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बम्बई आ गई। उन्हें पहला मौका 1980 में फिल्म पायल की झनकार के लिए मिला, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली फिल्म लावारिस के गीत से, जिसे अभी अभी हमने आपको सुनवाया। और उसके बाद सन 1988 में एक फिल्म आई तेजाब, जिसके एक गीत ने बॉलीवुड में धूम मचा दी। एक नई नवेली गायिका जिसे शायद पहले कोई उतना नहीं जानता था, वो रातों रात बॉलीवुड में प्रसिद्ध हो गई। उनका गाया ये गीत जो अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: पर
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

90 के दशक में अलका याग्निक ने कुमार सानू और उदित नारायण के साथ मिलकर कई ऐतिहासिक रोमांटिक और सदाबहार गीत गाए। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अलका याग्निक ने शिलोंग के व्यवसायी नीरज कपूर के साथ शादी की और इनको एक बेटी भी है जिनका नाम साइशा भी है। फिल्म जगत में अपने रोमांटिक गीतों के लिए अलका याग्निक काफ़ी मशहूर हुई। उनके गाए गीतों ने, खासकर रोमांटिक गीतों ने, फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया एक और गीत।

अपनी सुरीली आवाज़ के लिए पहचाने जाने वाली अलका याग्निक को हाल में ही एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके फैंस उनके इस समस्या को जानकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन फिर भी उनके अमिट योगदान को कोई नहीं भुला सकता है। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पूर्व उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह में अलका याग्निक के स्थिति को देखकर हर फैंस को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन अलका याग्निक की आवाज़ ने लोगों के दिल में जो जगह बनाई उसे शायद कोई ही नहीं मिटा सकेगा। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अलका याग्निक के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो को घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

बहनों श्रीना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर, जो हर वर्ष 29 जून को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय वैज्ञानिक और प्रसिद्ध सांख्यिकी विद पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने भारत में सांख्यिकी को नई पहचान दी और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाना शुरू किया था। अब यह सवाल हर किसी के मन में उठते हैं बहनों कि सांख्यिकी क्या होते हैं। तो साधारण भाषा में कहें तो किसी भी जानकारी को संख्या या आंकड़ों के रूप में समझना और उसका सही उपयोग करना ही सांख्यिकी कहलाता है। जैसे किसी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, किसी शहर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं या कितने किसान खेती करते हैं, ये सभी आंकड़े सांख्यिकी का हिस्सा है। आज के समय में सांख्यिकी का महत्व बहुत बढ़ गया है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ लगभग हर निर्णय आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है। सरकार जब नई योजनाएं बनाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी या रोजगार से जुड़ी योजनाएं, तब सही आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आंकड़े सही होंगे तो योजना भी अच्छी बनेगी और लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में 500 बच्चे हैं और वहां केवल एक छोटा स्कूल है, तो आंकड़ों के माध्यम से सरकार समझ सकती है कि वहाँ नए स्कूल या अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी तरह अस्पताल, राशन, खेती और रोजगार की ज़रूरतों को समझने में भी संख्या की मदद होती है। बहनों आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण हर दिन बहुत सारा डेटा बनता है। ऐसे समय में संख्या की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह हमें सिखाती है कि केवल जानकारी होना काफ़ी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझना और उपयोग करना भी ज़रूरी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमें यह सिखलाता है कि सही जानकारी ही सही निर्णय की नींव होती है। बहनों यह दिवस हमें आंकड़ों के महत्व को समझने और महान वैज्ञानिक पीसी महाल

0: नोविस के योगदान को याद करने का अवसर देता है। हमें इस दिन से प्रेरणा लेकर ज्ञान, जानकारी और तथ्यों का सही उपयोग करना चाहिए ताकि देश के विकास में अपना योगदान हम दे सकें। तो बहनों, बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर, प्रखंड रोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिसा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
5: ओ, 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
7: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
3: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: बहनों, हमारी आपकी बातें होती रहेंगी, हम ढेरों जानकारी भी लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मैडम, हम सभी को स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है और स्वस्थ रहने के लिए साफ और स्वच्छ पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किचन का साफ और स्वच्छ होना आवश्यक है। तो इसी बात पर और ज़्यादा जानने के लिए सुनते हैं पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है किचन में स्वच्छता का पालन अनिवार्य क्यों। वार्ताकार है श्रुति।
1: एक मनुष्य के जीवन में चार चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण

मानी जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। रोटी यानी मनुष्य का भोजन जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, और यह रोटी घर के जिस स्थान में बनाई जाती है उसे रसोई घर यानी किचन कहते हैं। रसोई घर का महत्व घर के पूजा स्थल के जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का भोग भी रसोई घर में ही तैयार किया जाता है। किचन को घर का हृदय माना जाता है, या वैसी जगह है जहां पूरे घर के सेहत का राज छुपा होता है। घर के प्रत्येक सदस्य के सेहत की जिम्मेदारी घर की महिला के ऊपर होती है, क्योंकि ज्यादातर घरों में रसोई पकाने का काम घर की महिला ही करती है, परंतु कुछ परिवार में यह जिम्मेदारी घर के पुरुष भी निभाते हैं। सदियों से किचन की महत्ता को स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में किचन साफ सुथरा रहता है उस घर के लोग स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। पहले जमाने में तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी किचन में रखी चीजों से ही हो जाती थी। ये माना जाता है कि घर के किचन को देखकर घर के लोगों के व्यवहार के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। घर के किचन में स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह वही जगह है जहां हमारा खाना बनता है। अगर किचन साफ ना हो तो जर्म्स और बैक्टीरिया खाने में पहुंच सकते हैं, जो हमारे बीमारी का कारण बन सकते हैं। कभी कभी किचन में सफाई ना होने के कारण कीड़े मकौड़े पनप जाते हैं, जो किचन में रखी चीज़ों को खराब कर देते हैं। इसलिए किचन को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। अगर किचन स्वच्छ होगा तो किचन में काम करने में भी मन लगेगा तथा खाना भी शुद्ध और स्वादिष्ट बनेगा। कहा भी जाता है, क्लीन किचन हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ, अर्थात एक साफ सुथरा रसोई घर एक खुशहाल जीवन और एक खुशहाल परिवार का निर्माण करता है। रसोई घर का स्वच्छ होना बहुत सारे फायदे देता है, जैसे बीमारियों से बचाव। गंदे किचन में बैक्टीरिया तथा जर्म्स जल्दी बढ़ते हैं, ये खाने को दूषित कर देते हैं और फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द तथा उल्टी जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। साफ किचन में स्वच्छ और स्वादिष्ट खाने को बनाया जाता है, जो परिवार को बीमारियों से दूर रखता है। ताज़ा खाना तथा स्वच्छता का ध्यान, साफ बर्तन, साफ पानी तथा तरीके से खाने के सामान को संरक्षित रखने से खाना ताज़ा रहता है, और अगर किचन साफ हो तो खाने का स्वाद और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। कीड़े मकोड़े की रोकथाम, किचन में कचरे पड़े रहने से मक्खी, चींटी, चूहे और कॉकरोच आदि आ जाते हैं। ये जर्म्स फैलाते हैं और खाने को खराब करते हैं। रोजमर्रा की सफाई से ये सब किचन से दूर रहते हैं। एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण, साफ किचन देखने में सुंदर लगता है और वहाँ काम करने में अच्छा महसूस होता है। इससे खाना बनाने में भी खुशी होती है और प्रसन्न मन से बनाया गया खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। सुरक्षा की गारंटी, अगर किचन का फर्श गीला या तेलीय हो तो कोई फिसल सकता है। गैस स्टोव के पास गंदगी रहने से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। साफ किचन ऐसे खतरों को कम करता है। समय और पैसे की बचत, जब किचन सुव्यवस्थित तथा साफ होता है तो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, खाना खराब नहीं होता, इसलिए वेस्टेज कम होता है और पैसे भी बचते हैं। किचन की सफाई सिर्फ सफाई नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की निशानी है। एक साफ किचन, स्वस्थ परिवार, सुरक्षित वातावरण तथा अच्छी जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जबकि एक गंदगी भरी किचन गंदी मानसिकता की द्योतक है। किचन की गंदगी सिर्फ किचन को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की सेहत को प्रभावित करती है, इसलिए किचन को हमेशा साफ और सुंदर रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो किचन गंदी बदबू से भर जाएगा और किचन में खाना बनाने में परेशानी होगी। परिवार के सदस्यों को स्वच्छ खाना नहीं मिलने से उनकी रोग निरोधक क्षमता कम हो जाएगी तथा वो बार बार बीमार पड़ेंगे। बिखरा और गंदा किचन काम को ज़्यादा मुश्किल बना देता है। किचन में काम करने का मन नहीं होता है तथा परिवार के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः एक खुशहाल परिवार के लिए एक स्वच्छ किचन का होना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किचन का सुव्यवस्थित होना घर की समृद्धि का प्रतीक है। किचन की सफाई करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। रोज़ सफाई करना, किचन की सफाई प्रत्येक दिन तथा सही तरीके से होनी चाहिए। किचन की सतह, स्लेब और सिंक को हर समय साफ रखना चाहिए, क्योंकि इनकी गंदगी से ही किचन में कीड़े पनपते हैं। विभिन्न प्रकार के

0: सफाई में प्रयुक्त होने वाली चीजें बाजार में उपलब्ध हैं, जिससे किचन को साफ रखने में मदद मिलती है। बर्तन तुरंत धोना। खाना बनाने में प्रयोग होने वाले बर्तन तथा जूठे बर्तन को हमेशा धोकर रखना चाहिए। इनको ज्यादा देर तक बेसिन में छोड़ देने से इनसे एक अजीब सी गंध आती है, जो घर के वातावरण को प्रदूषित कर देती है। कचरा को डस्टबिन में रखना चाहिए। घर के गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग जमा करके डस्टबिन में डालना चाहिए तथा डस्टबिन को हमेशा खाली करते रहना चाहिए, ताकि कचरे का जमाव नहीं हो पाए। डस्टबिन को भी साफ रखना चाहिए। खाना को ढककर रखना। तैयार खाना को हमेशा ढककर रखना चाहिए, ताकि धूल कण या कीड़े उसमें ना आ पाए। फ्रिज और सेल्स को साफ रखना। फ्रिज से सभी बेकार चीज़ों को निकालकर फ्रिज को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। फ्रिज में सामान को सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत की सामान को आसानी से निकाला जा सके। फ्रिज को बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। किचन के सेल्फ्स को भी हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर फ्रिज में कोई एक्सपायर्ड चीज़ें रखी हो तो उसे भी निकाल देना चाहिए। ताज़ा खाना का सेवन। किचन में खाना बनने के बाद उसे साफ जगह पर ढक कर रखना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बनाना चाहिए, ताकि खाना बासी होकर बर्बाद ना हो। हमेशा ताज़ा खाने का ही सेवन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर कुछ खाने को थोड़े दिनों के लिए रखना है तो फ्रिज में अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए। हाथ साफ रखें। खाना बनाते समय अपने हाथ को साफ रखना चाहिए। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले बर्तन, कपड़े आदि को साफ रखना चाहिए। किचन में जितनी सफाई होगी, घर के सदस्यों को उतना ही अच्छा सेहत मिलेगा। कहा भी गया है, साफ किचन सेहत को सुरक्षित रखता है। एक साफ सुथरा किचन अच्छी आदत और अनुशासन की मिसाल है। पेस्ट से बचाओ। अगर किसी कारणवश किचन में कीड़े हो जाते हैं तो विभिन्न तरह के पेस्ट का प्रयोग कर इन्हें खत्म कर सकते हैं। पर्याप्त वेंटिलेशन रखें। किचन ऐसी जगह हो जहां पर्याप्त रोशनी तथा वेंटिलेशन हो। एग्जॉस्ट फैन आदि का प्रयोग किचन को वेंटिलेशन में मदद करता है। चिमनी आदि का भी प्रयोग अनिवार्य है। एक साफ किचन एक खुशहाल घर का हृदय होता है। उसकी सफाई हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है, खाने की गुणवत्ता को बढ़ाता है और एक खुशनुमा वातावरण का निर्माण करता है, जहां परिवार के सदस्य खुश और स्वस्थ रहते हैं। किचन की गंदगी कभी कभी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ जाती है। विभिन्न तरह की संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पीड़ा होती है। इसलिए स्वच्छ किचन ही स्वस्थ जीवन का आधार है। अतः हमें हमेशा किचन में स्वच्छता का पालन करना चाहिए। ऐसा करके अपने तथा के सदस्यों के सेहत को हम बचा सकते हैं। हमें किचन को हमेशा स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित रखना चाहिए। अगर किचन में धूप आती हो तो छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे, जैसे पुदीना, धनिया, मिर्च या कुछ सजावटी पौधे भी लगा सकते हैं, जो किचन की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा किचन साफ और बीमारियों से सुरक्षित हो।
1: मैनू हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था किचन में स्वच्छता का पालन अनिवार्य क्यों। वार्ताकार थी श्रुति। जी हाँ बहनों, हम महिलाओं की बात करें तो आज वो किचन की स्वच्छता सुव्यवस्था के साथ साथ बाहर निकलकर खुद को भी साबित कर रही, अपनी एक अलग पहचान बना रही है। देश की उन्नति तरक्की में अपना भरपूर योगदान दे रही है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, दुनिया की तरक्की तब तक संभव नहीं जब तक कि महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती। एक डैने की मदद से कोई चिड़िया उड़ नहीं सकती। विवेकानंद जी के इन्हीं विचारों बहनों आज के समय में लगभग हर जगह, चाहे वह गांव हो या शहर, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, लेकिन इसके वास्तविक मायने कितने लोग समझ पाते यह कहना मुश्किल है। आज हम देखें तो हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन जिस तरह स्वस्थ रूप से सुधार की कल्पना की जानी चाहिए, सुधार हो सकता था, वैसा सुधार नहीं हुआ। पहले की अपेक्षा महिलाओं की दशा पर सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी देश की आधी आबादी अपने अनेकों अधिकारों से वंचित है। आज भी हमारे सामने पीड़ित महिलाओं के उदाहरणों में कमी नहीं आई है। समाचार पत्र, समाचार चैनल, वेब चैनल रेप दहेज के लिए हत्या, भ्रूण हत्या की घटनाओं से भरे

पड़े मिलते हैं और इन आंकड़ों में दिन व दिन बढ़ोतरी हो रही है। बहनों, आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी तमाम चुनौतियों से लड़ रही है, लेकिन इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में तो महिलाएं पुरुषों से आगे भी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समाज के कुछ पुरुष प्रधान मानसिकता वाले तत्व यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि महिलाएं भी उनकी बराबरी करें। ऐसे लोग महिलाओं के खुले विचार वाली कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन अब समय आ गया है बहनों कि महिलाओं के लिए अपनी सोच को पुरुषों को बदलना होगा, उन्हें महिलाओं को आगे आने देना होगा और साथ में सपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि अब महिलाएं आगे आ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, अब वो पीछे मुड़कर देखने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। तो बहनों, अपनी बातों को आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे ढेरों प्यारी प्यारी बातों के साथ, नई नई जानकारी के साथ। तो अब हमें दे आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया

0: दी है। आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी?
2: आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो
2: मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सर, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो।

0: पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़। और पुरखों की भी यही रीत है, मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे। अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा
1: सजा सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सजा सजा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सजा बेटे सजा सजा, शाबाश सजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सजा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी बढ़िया खाना खाऊंगी। इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम।

0: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
0: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: हाय रे, बात तो तुम्हारी सच है।
0: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
0: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ
2: चलो
1: चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
2: ये देखो, ये
1: देख लो।
0: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़ और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो, चलो।
0: अच्छा
1: हुआ चुप्पा,
2: क्या हुआ?
0: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया।
1: अरे दिखा दो
0: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
2: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों?
0: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल,
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा। हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा।

0: तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे हैं।
1: तू समझ गई है?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे

0: करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
1: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
2: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
1: किसी ने कहा,
3: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
1: किसी ने कहा,
4: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
1: किसी ने कहा,
5: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
1: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
1: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
2: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
7: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 1 बजने वाले

लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं नवल किशोर नवीना। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत, लेकिन पहले सुनिए कुछ संदेश।

0: सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं नवल किशोर नवीना। इन्हीं के गाए लोकगीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची की प्रसारण सभा में।
3: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा, 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा IIM अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्य भर के लिए तैयार होगी रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवीं कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। राज्य सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्यों की चरणबद्ध नियुक्ति कर रही है, जिसके तहत अब तक 12,500 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। राजधानी रांची में आयोजित समारोह में एक छात्रा द्वारा रीइंबर्समेंट और 15 लाख रुपए की ऋण सीमा का मुद्दा उठाए जाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि योजना की कमियों को दूर किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ऋण सीमा बढ़ाने पर भी विचार होगा। इधर कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गई है, इसलिए सफलता के लिए खुद को आगे रखने की जरूरत है।
4: यही जनरेशन जो है वो आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारे देश को आगे लेके जाने वाली है। इनको उस लायक भी बनना होगा, उस लायक बन सकते हैं ये लोग जहाँ ये लोग देश का नेतृत्व कर पाए सभी सेक्टर में। मुझे विश्वास है और भरोसा भी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे ये।
3: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र सही ढंग से भरकर हस्ताक्षर सहित BLO को लौटाना होगा।
5: आने वाला इनमेशन फेस 30 जून से 29 जुलाई तक होंगे। कमीशन का इंस्ट्रक्शन पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में एक ही है, इसलिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस नहीं। आपका कहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का संबंध है, कमीशन का बहुत ही इंस्ट्रक्शन क्लियर है, इनमेशन फेस में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है।
3: शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ED से समन मिलने के बाद राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। समन के अनुसार पूर्व मंत्री को आज अपने पुत्र रोहित उरांव के साथ एजेंसी के कार्यालय में पेश होना था। ईडी ने संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागजात के साथ दोनों को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने नए बिजली कनेक्शन के लिए संशोधित शुल्क सूची जारी कर दी है, जो 1 मई से लागू है। नई दरों के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट के घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 4,825 रुपए का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के कारणों का अध्ययन अब भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद करेगा। देश में पहली बार किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान ने इस विषय पर अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में गोला और गोमिया को पायलट अध्ययन के लिए चुना गया है और वन विभाग और IIM की टीम क्षेत्र का दौरा भी कर चुकी है। दोनों संस्थानों के बीच जल्द MOU होने और अध्ययन शुरू किए जाने की उम्मीद है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF वन्य प्राणी रवि रंजन ने बताया कि इस अध्ययन से मानव हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा। धनबाद में जल्द ही 4 नए टाउन हॉल का निर्माण किया जाएगा। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिले की आबादी को ध्यान में रखते हुए नए टाउन हॉल की जरूरत महसूस की जा रही थी।
6: धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज्यादा जैसी संख्या हुई, तो कोई भी अच्छा हॉल, जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, फिर सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो IB बंगलो है, उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रूपए आवंटित किए है, उसका भी रिनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे।
3: श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों के आकलन का जायजा लिया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार एक नई पहल की गई है। देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि पहली बार श्रावणी मेले के दौरान टोटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है।
7: सावन में भीड़ को देखते हुए हमने टोटो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि भीड़ में ये टोटो एम्बुलेंस आसानी से चला जाए और वहाँ पे जो भी आवश्यकता होगी उनको वहाँ से लेके हम टेंडर निकाले हैं। कोई दवाइयाँ भी रहेगी, अगर हल्का फुल्का होगा तो निकटवर्ती सेंटर में ले जाएंगे, अगर विशेष दिक्कत होगी जिसमें हम लोग सजगता ला चुकेगा।
3: रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां आज देव स्नान यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिन के अनासर यानी एकांतवास में चले जाएंगे। 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुबह 4 बजे पूजा आरती के बाद दोपहर 2:30 बजे विग्रहों को रथारूढ़ कर शाम 5 बजे रथ संचालन शुरू किया जाएगा। रथ शाम 6 बजे मौसीबाड़ी पहुंचेगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और

0: वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में 1042 नव चयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की खामियां दूर करेगी राज्य सरकार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, ऋण सीमा बढ़ाने पर भी होगा विचार। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। बीएलओ घर घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र। 29 जुलाई तक चलेगा अभियान। राज्य में नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा। 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन के लिए अब देने होंगे 4825 रुपए। और मानव हाथी संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेगा IIM अहमदाबाद। पायलट स्टडी के बाद राज्य भर के लिए तैयार होगी रणनीति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग का शेष भाग। इस भाग में आइए हम सुनते हैं नवल किशोर नवीना से एक देवी गीत। लेकिन पहले सुनिए कुछ संदेश।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश

0: सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी अदस ग्राम पंचायत राजमोतीपुर प्रखंड डोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं जिसा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अंत में लीजिए सुनिए नवल किशोर नवीना से ये देवी गीत।

प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुने वाली सभ्य बहिन का दीपा के नमस्कार। बहिन, मॉनसून अयला के बाद जेहनो बारिश होना चाहिए ओहनो तो नहीं हो रहलो छे, उल्टे गर्मी से हाल बेहाल हो रहलो छे। अभियो भी घर सब बाहर गेला पर पसीना से तरबतर हो जा रहलो छे। यही सब बहिन, पानी के बोतल तो साथ में जरूर से रखियो, नहीं तो परेशानी महसूस हुआ लगे छे कि पानी कहाँ से लानी है। अभी तो बहिन आम खूब मिला लगले बाजार में, आम बहुत सस्ता नहीं तो बहुत महगो नहीं छे। आम गुण से भरलो फल छे, आम में विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज सीनी पैलो जाए छे, जे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाए छे। आम में कैरोटीन होय छे जे आँख के रोशनी में सुधार करे छे। ई फल में मिनरल्स जेना कि पोटैशियम, आयरन सीनी मिले छे। तो बहिन, आम खाए में पीछू बिल्कुल नहीं रहना छे, खूब मन भरी का आम खाना छे। बहिन, दुख

मतलब बहिन कि दुख में तो सभ्य भगवान का याद करे छे, लेकिन सुख में कोई नहीं करे छे। अगर सुखों में भगवान का याद कर लो जाए तो दुख कहना होता है।

होय, मतलब कि एहनो मीठा वाणी बोलियो कि अपनो अहंकार खत्म हो जाए, तोरो बात से दूसरा का शांति मिले आरु अपना का भी सुकून मिले। तब बहिन सही समझ लो, आय कबीर दास जयंती छके, जे कि हर साल ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा का मनेलो जाय छे। ई दिन महान संत कवि और समाज सुधारक कबीर दास के जयंती के रूप में पूरा भारत में, खास करी का उत्तर भारत में खूब श्रद्धा भाव से मनेलो जाय छे। कबीर दास 15वीं सदी के एहनो संत छले जे अपनो दोहा से समाज का एक नया दिशा दिलके। कबीर दास के जन्म काशी में होलो छले। कुछ इतिहासकार के अनुसार हुनको जन्म 1398 में होले। हुनको माता पिता के पता नहीं छे। कहलो जाय छे कि नीरू आरु नीमा नामक दंपत्ति न हुनका लहर तारा तालाब के पास पैला छले आरु पाललके। हुनी पढ़लो लिखलो नहीं छले, पर हुनको अनुभव आरु ज्ञान हुनका महान बनाए दिलके। हुनी रामानंद के शिष्य मानलो जाय छे। कबीर दास को एक धर्म के नहीं बल्कि पूरा मानवता के समर्थक छले। हुनी समाज का सही राह दिखावे वास्ता बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिलके। हुनी जाति धर्म और ऊंच नीच के भाव के पुरजोर विरोध करलके। कहलके कि सभ्य मनुष्य एक के ईश्वर के संतान छिके। कबीरदास धर्म के नाम पर होय वाला दिखावा, अंधविश्वास और कुप्रथा पर तीखा प्रहार करलके। आज भी समाज में जातिवाद, धार्मिक कट्टरता आरु आडंबर मौजूद छे। एहनो में कबीर के बात आरु भी जरूरी हो जाए छे। हुनी सिखाए छे कि सच्चा धर्म प्रेम, भाईचारा आरु इंसानियत छे। हुनको दोहा आज भी उतने सटीक छे जितना 600 साल पहला छले। बहन, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया आपना मुझसे बुरा न कोई। मतलब बहिन कि दुनिया में बुराई ढूंढे ला निकल लिए तो हमरा कोई भी बुरा इंसान नहीं मिले, लेकिन जब हम अपनो मन में झांक लिए तो हमरा से बुरा कोई नहीं मिले। कबीर कहे छे।

0: कि दूसरा पर दोष देखे से पहला हमरा सनी के अपनो अंदर झांकना चाहिए। ई दिन कबीर मठ आरु मंदिर में विशेष सत्संग आरु भजन कीर्तन होय छे। काशी में कबीर चौरा मठ आरु मगहर में मुख्य आयोजन होय छे। लोग कबीर के दोहा गाय छे, हुनको सखी पर चर्चा करे छे और शोभा यात्रा निकाले छे। स्कूल और कॉलेज में कबीर के जीवन पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता भी होय छे। बहिन संत कबीर दास के विचार आज को समय में पूरा तरह से प्रासंगिक छे। कबीर जयंती खाली एक त्यौहार नहीं बल्कि हुनको द्वारा दिखेलो गेलो सत्य अहिंसा और भाईचारा के मार्ग पर चले के संकल्प लय के दिन छे। कबीरदास एक कवि नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी संत छले, जे कलम का तलवार बनाए का समाज के बुराई पर वार कर लके। ए दिन हमरा सनी का याद दिलाए छे कि हमरा सनी कभी हुनको रास्ता पर चली का एक एहनो समाज के निर्माण करना छे, जहाँ न कोई ऊंचा हुआ न नीचा, बस इंसान हुआ और इंसानियत हुआ। छे कि नहीं बहिन? तब बातचीत के सिलसिला अभी हेने जारी रहते आरु एक ठो बढ़िया जनो गीत के भी आनंद लेबे, लेकिन होकरा से पहला ले छे एक छोटा जनो अंतराल।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अरुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग का गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: जरूर बहनी स्मिका अच्छा लगलो होते। बहन सावित्री बाई फूले ना महिला का शिक्षा के मूल अधिकार से जोड़ी का नारी सशक्तिकरण का नया दिशा दिल के होनी ना सामाजिक कुरीति के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ देश के पहलो बालिका विद्यालय के स्थापना अपनो पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर कर लगे जे कि भारत में स्त्री वास्ता पहलो विद्यालय छले। सावित्रीबाई फूले ना लड़की और समाज के बहिष्कृत हिस्सा के लोग का शिक्षा प्रदान करे में अग्रणी भूमिका निभल के। त यही विषय शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का योगदान पर एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से आरो भी विस्तार से जानकारी हासिल करे छे। जेकरो वार्ताकार छे के संयुक्ता भारती त सुने छे।
1: आधुनिक भारतीय स्त्री शिक्षा संबंधी प्रयासों का जब भी जिक्र होगा सावित्रीबाई फूले का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। इनका संपूर्ण जीवन शिक्षा और शिक्षण संबंधी कार्यों की प्रयोगशाला रही, जिससे प्राप्त अनुभव और अदम्य साहस के साथ सावित्रीबाई फूले ने समाज में एक नया आदर्श स्थापित किया। सावित्रीबाई फूले युग मनीषी ज्योतिराव फूले की सहधर्मिणी पत्नी थी, साथ ही उनके समाज सुधार कार्यों का अविभाज्य हिस्सा भी। लेकिन इनकी पहचान इससे अलग एक उच्च आदर्शों से परिपूरित क्रांतिकारी विचारों वाली विदुषी महिला की है। स्वयं ज्योतिराव फूले ने अपने जीवन में उनके योगदान के संबंध में कहा है, अपने जीवन में मैं जो कुछ भी कर सका इसके लिए मेरी पत्नी कारणीभूत है। ज्योतिराव फूले ने जब अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की उसमें शिक्षण खासकर स्त्री शिक्षा को प्रधानता दी। वंचितों के उत्थान के लिए भी वे शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा के प्रबल हिमायती रहे। अपने इस महान विचार का शुभारंभ सही मायने में ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करने से की। सावित्रीबाई जिस प्रकार उनके जीवन की अर्धांगिनी थी उसी प्रकार उनके क्रांतिकारी आंदोलन की भी अर्धांगिनी बन गई। इनमें धैर्य नीति समर्पण की भावना व दूरदृष्टि थी। इसी कारण वह अपने लौकिक सुखों को त्याग कर पति के सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ खड़ी रही। समाज के शोषित वर्गों के उत्थान में दोनों को ही समान आस्था थी। सावित्रीबाई फूले सार्वजनिक जीवनचर्या को अंगीकार करने वाली 19वीं सदी की पहली भारतीय महिला थी। सावित्रीबाई सतारा जिले में खंडाला तहसील के नायगांव निवासी खाडूजी नेवसे पाटिल की ज्येष्ठ कन्या थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। 1840 में इनका विवाह ज्योतिराव फूले से संपन्न हुआ। उस समय ज्योतिराव की आयु 13 वर्ष की थी तो सावित्रीबाई केवल 9 वर्ष की थी। सावित्रीबाई की शिक्षा ज्योतिराव की निगरानी में आरम्भ हुई। उनको पढ़ाने लिखाने का काम खुद ज्योतिराव ही करते थे। सगुनाबाई से भी उन्हें इस कार्य में बड़ी मदद मिली। सगुनाबाई ज्योतिराव के पिता के दूर के रिश्ते की एक बहन थी। सावित्री तथा सगुना दोनों ने मराठी भाषा का उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। उस समय पूना में मिसेज मिचेल नामक एक ब्रिटिश महिला मिशनरी नॉर्मन स्कूल चलाती थी, जिसकी स्थापना उन्होंने सन 1840 में की थी। सावित्री तथा सगुनाबाई दोनों ने ही मिसेज मिचेल के नॉर्मन स्कूल में ट्रेनिंग ली। लगभग 4 साल का कोर्स पूरा कर सावित्रीबाई ट्रेंड शिक्षिका बन गई। छात्रावस्था में सावित्री ने नीग्रो दास्ता के विरुद्ध संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी थॉमसन क्लार्कसन के चरित्र का अध्ययन किया था। उनकी यह संघर्ष यात्रा व साहस से वे काफी प्रभावित थी। अध्यापन प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद सावित्रीबाई के जीवन कार्य की सही अर्थ में शुरुआत हुई। सन 1848 में ज्योतिराव ने बुधवारपेट नामक स्थान में रहने वाले अन्ना साहब चिपलूणकर के विशाल भवन में केवल लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह दूरदर्शिता दिखाने वाले वे पहले भारतीय थे। लड़कियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को नहीं तैयार होने पर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को ही इस कार्य के लिए तैयार किया। सावित्रीबाई फूले इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी। बाद में मुख्य अध्यापिका भी उन्हें ही बनाया गया। इस प्रकार सावित्रीबाई फूले प्रथम भारतीय शिक्षिका बनी। घर के बाहर कदम रखकर समाज के क्षेत्र में खुलेआम आने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी। सावित्रीबाई का स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना परंपरावादी समाज की चूल्हे हिला देना था। यह बात उस समय के लिए काफी साहसिक एवं क्रांतिकारी कदम था कि एक वंचित वर्ग की महिला प्रतिबंधित स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालय में अध्यापन कार्य करती है। धर्म मार्तंड लोग किसी स्त्री का इस तरह निर्भयता पूर्वक आचार करना फूटी आंखों में भी नहीं सह सकते थे। सावित्रीबाई को छालेदार करने में उन्हें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। घर से बाहर निकलकर वह स्कूल जाती तो वे रास्ते में खड़े होकर उन्हें गंदी गालियां देते, उस पर थूकते और पत्थर मारते, उस पर गोबर उछलाते। उस समय सावित्रीबाई कहती, मेरे भाइयों मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मुझ पर पत्थर नहीं फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारी इस करतूत से मुझे यही सबक मिलता है कि मैं निरंतर अपनी बहनों की सेवा करती रहूं। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। लड़कियों की पाठशाला की सफलता से प्रेरित होकर वंचित वर्ग के लड़कियों और एवं लड़कों के लिए भी फुले दंपति द्वारा पाठशाला की स्थापना की गई। सकुना और सावित्री बाई दोनों ने इसमें पढ़ाना शुरू किया। अल्पकाल में ही फुले दंपति ने पूना और उसके नज़दीक के गाँवों में लगभग 18 स्कूल खोले। निःशुल्क अध्यापन कार्य एवं स्कूल चलाने के बाद अपने जीवन निर्वाह के लिए सावित्री बाई कुछ महिलाओं के साथ रजाइयाँ तैयार कर भेजने का कार्य भी करती थी। 1851 में पहली बार जुडिशियल कमिश्नर बनकर पूना आए शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वार्डन महोदय ने शहर में छोटे से घर में चलाए जा रहे इन विद्यालयों के संचालन को देखकर हतप्रभ रह गए। वह यह देखकर और भी अचंभे में डूब गए कि पूना के इस विद्यालय समूह की मुख्य अध्यापिका एक क्रांतिकारी विचारों वाले फूल माली की पत्नी है, जिसने छोटी आयु में अपनी पढ़ाई इसलिए निरंतर जारी रखी जिससे वह इस देश की महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके, उन्हें उनकी दयनीय स्थिति से उबार सके। सावित्री बाई की प्रेरणा व सलाह से बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना भी की गई। उन्होंने इस आश्रम की जिम्मेवारी भी पूरी तरह से खुलकर संभाली। ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद 1890 से 1897 तक सावित्री बाई फूले ने सत्यशोधक समाज के लिए ठोस कार्य किया। महिलाओं खासकर दीन दलित स्त्रियों के लिए छोटे छोटे उद्योग की व्यवस्था की। विधवा पुनर्विवाह हेतु सावित्री बाई द्वारा 15 दिन में ऐसी विधवाओं की सभा आयोजन किया जाता था जिनमें नारी संबंधी समस्याओं पर विचार कर उपाय भी सुझाए जाते थे। वास्तव में यह संगठन ही नारी मुक्ति का प्रथम संगठन था, इसलिए भी सावित्री बाई फूले नारी मुक्ति आंदोलन की प्रथम नेता साबित होती हैं। नारी मुक्ति आंदोलन की जड़ सावित्री बाई के कार्यों में मिलती है। सावित्री बाई फूले न सिर्फ एक कुशल अध्यापिका, दृढ़ निश्चय निर्भीक महिला, बल्कि बुद्धिमान लेखिका और प्रतिभा संपन्न कवित्री भी थी। सावित्री बाई फूले ने शिक्षा, जातीय विषमता, बाल कल्याण, किसानों की वास्तविक स्थिति, इन विषयों पर लिखा है। उनमें वे सारे गुण थे जो एक अच्छे साहित्यकार में होते हैं। इस विधान का प्रमाण है सावित्री बाई फूले की गृहिणी मासिक में स्त्री जागृति के लिए लिखे गए सब महत्वपूर्ण लेख। सावित्री बाई फूले का प्रथम काव्य संग्रह 1854 में काव्य फूले इस नाम से प्रकाशित हुआ। सावित्री बाई फूले का दूसरा काव्य संग्रह 52 काशी सुबोध रत्नाकर नाम से 1892 में विदर्भ के अमरावती जिले के करजग गांव में प्रकाशित हुआ। शिक्षा के लिए जागृत होने के संदेश देते हुए उन्होंने अपनी कविता में कहा है, उठो बंधुओं अति वंचितों, जागृत हो परंपरा की गुलामी नष्ट करने के लिए, उठो बंधुओं शिक्षा के लिए उठो अज्ञान। इस कविता में सावित्री बाई कहती हैं, केवल एक ही शत्रु है अपना, मिलकर निकाल देंगे उसे बाहर, उसके सिवा कोई शत्रु ही नहीं। बताती हूँ उस दुष्ट शत्रु का नाम, सुनो ठीक से कान लगाकर, वह तो है अज्ञान। पिछड़ी जाति के शिक्षा को कितनी आवश्यकता है और शिक्षा का क्या तात्पर्य है, यह सावित्री बाई फूले ने अच्छी तरह समझाया है। विद्या रे धन आह रे, श्रेष्ठ साया धनाहून, टीचा शाठा जया पाशी, ज्ञानी तो मानती जन। विद्या या शिक्षा अब संपत्ति से श्रेष्ठ संपत्ति है। यह संपत्ति जिसके पास है उसे सब ज्ञानी मानते हैं। इस प्रकार के विचार उनके श्रेष्ठ धन इस कविता में है। शूद्राणा संगणा जोगा आहे शिक्षान मार्ग हा, शिक्षा जाने मनुष्यत्व पशुत्व हटाते पहा। स्पष्ट है ज्योतिराव फूले के अद्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन के संघर्ष में तपकर सावित्री बाई का व्यक्तित्व और कृतित्व और भी तेजोमय हो गया। परंतु सावित्री बाई का स्वतंत्र व्यक्तित्व भी था। उनकी अपनी निष्ठा और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय प्रथम भारतीय शिक्षिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता बनाया। साथ ही ज्योतिबा को मानव से महामानव। सावित्री बाई की प्रेरणा ही आगे चलकर डॉक्टर आनंदी बाई, गोपाल जोशी, पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रखमाबाई, ताराबाई शिंदे, रमाबाई रानाडे, काशीताई कानितकर, आनंदीबाई उपाख्या, बाया कर्वे, डॉक्टर कृष्णाबाई केवलकर, राधाबाई कृष्ण राव केवलकर इत्यादि कृतित्व संपन्न महिलाओं में उतरी और सारे महाराष्ट्र के स्त्री जीवन में उत्थान की एक प्रचंड लहर चल पड़ी। डॉक्टर एम जी माली ने अपनी पुस्तक में सावित्री बाई फूले का नाम क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले स्पष्ट किया है। यह अलंकरण उनके त्याग पूर्व व निस्वार्थ सामाजिक शैक्षणिक सेवा के लिए उपयुक्त है। सावित्री बाई फूले का मूक संघर्ष आज हमारे प्रखर सम्मान का हकदार है।
0: हाँ बहन, तक कितना अच्छा हम असनी जानकारी पे लिए कि सावित्री बाई फूले के प्रेरणादायी जीवन राष्ट्र निर्माण में हमेशा मार्गदर्शक बनलो रहते। आरोपी के तरह के अच्छा बात के जानकारी पे लिए थे। इतना अच्छा जानकारी दे वास्ता बहन संयुक्ता भारती का बहुत बहुत धन्यवाद। तक की विचार बहन, एक ठो देवी गीत के आनंद फिर उसे उठेलो जाए तो सुनी छे।

जानुक तू है शिव नैहर मोर, जानुक तू है शिव नैहर मोर, टूटली मरे

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान, देश के नंबर।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से अरुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: तब बहिन आज को साथ बस यहीं तक, अगला दिन आरो भी कुछ नया जानकारी के साथ उपस्थित होवे। आपनों से नी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहिन दीपा के नमस्कार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं को संबोधित था हमारा कार्यक्रम घर आंगन। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं पटना के प्रसारण सभा में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार वे राज्य में प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की लगातार समीक्षा पर भी जोर दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री पासवान ने महाराष्ट्र के परभणी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता से मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है। साथ ही शहर में बीएसएनएल सेवा भी प्रभावित हुई है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान यह सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह अगलगी की घटना में 50 लाख रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अग्निशमन दस्ते की 21 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर दो चार पहिया वाहनों के आमने सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी आज दिल्ली के दौरे पर रवाना हो गए हैं। जनाब चौधरी मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो रियासत में मुजव्वजा मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों के सिलसिले में मरकजी वजीर से गुफ्तगु करेंगे। वज़ीर आला का पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ भी मुलाकात का प्रोग्राम है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट से वाबस्ता अफसरान को तामीराती कामों में तेज़ी लाने के साथ ही हर मरहले के लिए वाज़ह मुद्दत तय करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की मुस्तकिल निगरानी और पेशरफ्त के जायज़े पर जोर दिया। मरकजी वजीर फूड प्रोसेसिंग चिराग पासवान ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग की सनअत किसानों की आमदनी बढ़ाने, देही इक्तसादी निज़ाम को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही है। जनाब पासवान ने महाराष्ट्र के परभनी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नौजवानों से फूड प्रोसेसिंग सनअत से वाबस्ता होने की अपील की। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरी मांगने की बजाय रोज़गार देने वाला बनना चाहिए। जनाब पासवान ने कुदरती खेती को फ़रोग देने और हिंदुस्तानी खुरदनी पैदावार को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने पर भी जोर दिया। कौमी योम शुमारियात के मौके पर आज रियासत में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी शुमारियात दफ्तर की रीजनल इकाई की तरफ से पटना के कर्पूरी सदन में मुनक़िद खसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर जनरल रोशन लाल साहू ने किया। इस मौके पर जनाब साहू ने अपने खिताब में कहा कि कौमी शुमारियात मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कल हुए सिपाही भर्ती इम्तहान के दौरान बदनवानी के इल्ज़ाम में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक रुकन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ज़िले के रामनगर थाना इलाके के तहत नवागढ़ी हाई स्कूल इम्तहान मरकज पर छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारी की। पुलिस सुपरिटेंडेंट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए मुलजिम राहुल से पूछताछ की जा रही है। रियासत के बेशतर हिस्सों में मानसून के सरगर्म होने से दरमियाना और शदीद बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने अगले तीन दिनों तक रियासत के शुमाल मगरिब, शुमाल वस्त, जुनूब मगरिब और जुनूब वस्त हिस्सों में मुतअद्दद मुकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, मगरबी चंपारण समेत कई ज़िलों में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के इलाकों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे से मिली इतला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे ज़्यादा 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया नुमाइंदा ने बताया है कि ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश से कई मकामात पर आबी जमाव हो गया है। बेगूसराय ज़िले के सिंघौल थाना इलाके के तहत अंग्रेज़ी ढाला के पास कौमी शाहरा नंबर 31 पर दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए। इन सभी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को सड़क से हटाकर आमदोरफ्त बहाल कर दी है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना इलाके के तहत छपरा सिराहट टोला में सिलेंडर ब्लास्ट के वाके में चार लोग झुलस गए। इस वाके में आग लगने से कई घर आग की जद में आ गए। इधर पटना के दीदारगंज थाना इलाके के तहत करमली चक वाके एक वेयर हाउस में आज सुबह आग लग जाने से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कीमती सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के सबब का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 2:15 होने ही वाले हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली की प्रसारण सभा में दोपहर समाचार के लिए। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत

0: हथनीकुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा से जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
5: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।

0: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: लीजिए अब सुनिए फिल्म काला पत्थर का गीत, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कालीचरण से, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मंजिल का ये गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए बांग्ला गान। आरंभ में आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: आप सुन रहे थे बंगला गान, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्त गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल हो।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथा कथित ही जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितने अच्छे तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो निहा किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है, और निहा जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, अब घर में आप अगर आप रह रहे तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को से क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी में देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है, किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों, बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की, संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक

0: और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना छोड़ना मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उसे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में, इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है,
0: ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना?
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच
1: हाँ
0: तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्य और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए,
1: वाकई
0: है ना?
1: मंजरी जी। और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा है।
1: सब
0: और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है।
0: क्या बात,
1: और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर पे जा रही हैं और उन्हें

0: पूरे समय वहाँ रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है, तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहाँ रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: तो वो घबरा जाते
0: हैं, घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है, वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है,
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है, आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन ने रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो
0: नहीं,
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पाती पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता ये बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो में सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है
1: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझें, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे,
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो देखो,
1: बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा,
0: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो है वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, इस दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको IBP हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक का आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए, समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे यहाँ हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं, और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन्स होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया
0: जी। तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना,
1: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
0: दही
1: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
0: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
1: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
0: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल, क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी,
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी, और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी, और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट के जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है।
0: जी, और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।
0: okay.
1: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी,
1: और काफी सुना है हमने
0: जी।

0: डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी।
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है,

जिस तरीके से हम देखते जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अब ये काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं।

0: मेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, एक छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 आवर pH मैनोम pH प्रोब बोलते हैं जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
0: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये गाना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
2: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
2: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन आल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
1: जी, जी।
2: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो,
1: क्योंकि
2: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
2: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
2: अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
2: बिल्कुल
1: तो,
2: बिल्कुल।
1: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है? तो ये
2: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर. तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए. वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक. मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ द फूड पाइप द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स. तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे. धूम्रपान टबैको सेम चीज. धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है. ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है. उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो तंबाकू खाओ तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है. अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड. अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी. मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं. ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है आपने दूसरी बीमारी डाली है तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है. तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल.
1: जी जी डॉक्टर साहब लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को.
2: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी. एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है. सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है. तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का. इसके हम काफी कैंप्स करते हैं. आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो. अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए. दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी. बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है हेपेटाइटिस ई होता है. ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है. फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं. खान पान साफ नहीं होता है तब ये वायरस होता है. लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है. हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं. हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम. एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी. ये अभी हम कम देखते हैं. फॉरेन में ज्यादा दिखता है इंडिया में कम दिखता है. ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है. हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं ये लिवर को होती हैं. ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं. हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है. तो अपने टेस्ट कराइए. अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो. ये कॉमन इंजरी है लिवर की. तो फैटी लिवर हमने बोला. अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है. अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है. ये कॉमन है. वायरसेस कॉमन है. फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं. लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन. गॉल ब्लैडर में पथरी होती है वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है. उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है. अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है. तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं गॉल स्टोन्स अल्कोहल फैटी लिवर एंड वायरसेस.
1: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है ये भी वजह होती है क्या.
2: बिल्कुल हो सकती है. कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है वॉमिटिंग शुरू हो जाती है स्पेशली फैटी फूड खाके तला हुआ खाके. दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है. इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है. एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं.
1: जी जी और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है.
2: नहीं जरा भी नहीं. गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती. लाइफ नॉर्मल कटते रहती है.
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई. और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है. अमूमन लोगों को ये होता है ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है तो इसकी वजह क्या होती है. एक तो स्ट्रेस आपने बताया था तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या.
2: ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है. अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं. तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले. अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ. एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए पहुंच जाओ जहां पहुंचना है. तो बेसिकली इट इज टू डू विद आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी. दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव. हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत.
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या कुछ नहीं?
2: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
2: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
2: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो,
1: चले चलो लगान का,
2: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।
3: बार बार

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जाए ये तेल अच्छा है ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और
1: स्टेरॉइड भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त संध्या और हाजिर हूं आपके फेवरेट रेडियो शो युववाणी के साथ। प्यारे दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर अपने आगे बढ़ रहे होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रूपरेखा में जानते हैं कि हमने आज के कार्यक्रम में आपके लिए क्या कुछ संजो कर रखा है। साथियों, आज सबसे पहले दिन विशेष में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के बारे में। इसके बाद साप्ताहिक स्तंभ रोजगार सूचना में हम जानेंगे जॉब अपडेट्स। उसके बाद स्तंभ सृजन में हम सुनेंगे कुछ कविताएं। साथ ही स्तंभ समसामयिकी में हम जानेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स। इस बीच मधुर फिल्मी गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम लाए हैं आपके लिए कुछ संदेश, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: हे गर्ल्स,
4: हाय, कांग्रेचुलेशंस।
3: आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दिन विशेष में हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के बारे में। साथियों, आज 29 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मना रही है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व, उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। साथियों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पूरे वर्ष अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होती है और कई स्थानों पर अच्छी वर्षा भी होती है। इसी कारण इन क्षेत्रों में घने जंगल, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता यानी कि जीवों और वनस्पतियों की सबसे अधिक प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं। भारत भी एक उष्णकटिबंधीय देश है। हमारे देश के जंगल, नदियां, पहाड़, समुद्री तट और वन्य जीव न केवल हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार भी हैं। खेती, मछली पालन, औषधीय पौधे, पर्यटन और वनों से मिलने वाले अनेक संसाधन हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। लेकिन आज ये कई क्षेत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, बढ़ता तापमान, प्लास्टिक कचरा और अनियोजित शहरीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका असर केवल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। समय पर वर्षा ना होना, बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हमें यह संदेश देता है कि यदि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो प्रकृति की रक्षा करनी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखना चाहिए। यही छोटे छोटे प्रयास आगे चलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित पृथ्वी छोड़ने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी संदेश के साथ हम आज के दिन विशेष की चर्चा को समाप्त करते हैं और डेली ट्रिविया के प्रश्न को जानते हैं। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, अब आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढिए और साथ ही सुनिए एक मधुर गीत फिल्म धुरंधर से अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में।

वेलकम बैक साथियों, अब वक्त हो गया है साप्ताहिक स्तंभ सृजन का। तो आइए स्तंभ सृजन में सुनते हैं युवा साथी सुमन सौरभ की कविताओं को।

शीर्षक है माँ मेरी सब अपराध क्षमा कर, हमें सरल कर नत कर अपनी चरण धूलि में समा कर। माँ मेरी सब अपराध क्षमा कर, दंभ अहम राग विराग सब हर, हमें हमारी लघुता से मुक्त कर। ब्रह्म सत्य यह जगत झूठ आज मेरे रोम रोम में भर, माँ मेरी सब अपराध क्षमा कर। अपनी ही लघुता में घिर घिर छन छन छीन जर जर हो रहे, जन्म मरण पाप पुण्य सब हम भूल गए, आज हमारी भूल क्षमा कर। अपनी चरण धूली बनाकर माँ मेरी सब अपराध क्षमा कर। अगली कविता है जीवन धारा। चल भविष्यत को पथिक तू क्यों बैठे हो अतीत संजोए, बीती बातों की ज्वाला में क्यों झुलस रहे हो तभी से। नदिया की बहती धारा में एक कंकरिया जो कोई फेंके, नदिया विरल भाव से लेकर साथ उसे भी है चलती। कभी गुफाएं कभी कंदरा, कभी गिरी से है टकराती और बनाती नई राह, सागर से जा मिल जाती। जीवन भी एक नदिया है, इसे भी चलते रहना है, नित्य नई बाधाएं हैं तोड़ कर आगे बढ़ना है। जब तक बहेगी जीवन धारा आगे को नित बढ़ना है, रुक जाएगी यह धारा माटी में मिल जाना है। अगली कविता की शीर्षक है एक आस लिए अब चलना होगा। एक आस लिए अब चलना होगा, नित उद्यम अब करना होगा, जग के लिए कुछ करना होगा, जग में आगे बढ़ना होगा। राह भरे अंगारों से फिर भी कदम बढ़ाना होगा, हर गम को अब पीना होगा, हर पल को अब जीना होगा। एक आस लिए अब चलना होगा, नित गान नवल अब गाना होगा, अंबर में अब उड़ना होगा, सागर में अब चलना होगा, पर्वत को झुकाना होगा, दुश्मन को मिटाना होगा। एक आस लिए अब चलना होगा, हंसते हंसते रोना होगा, रोते रोते हंसना होगा, अपनों को अब खोना होगा, खुद को अब खोना होगा, ऋण माँ का चुकाना होगा। एक आस लिए अब चलना होगा, नभ पर अब छाना होगा, धरती को सजाना होगा, खुद हमें अब सजना होगा, हर गुल को खिलाना होगा, सबको अब हंसाना होगा, खुद हमें अब हंसना होगा। एक आस लिए अब चलना होगा, हंसते हंसते जीना होगा, हंसते हंसते मरना होगा, वतन लिए अब जीना होगा, वतन लिए अब मरना होगा, और हमें कुछ करना होगा, एक आस लिए अब चलना होगा। अगली कविता की शीर्षक है बरखा। जेठ लगाती प्यास धरा को, प्यास बुझाती आकर बरखा, धूप से धू धू जलती धरती, शीतलता संग लाती बरखा, बिटप की सूखी डाली पर हरियाली फैला

0: पत्ती बरखा। वन की मयूरा के संग संग नगर की बाला नाची देख बरखा। बादल का घनघोर गरज कर जेठ को चैताती बरखा। बिजली की चमक चमका अपनी तेज दिखाती बरखा। नभ के ऊपर घट लगा धरा को शीतल करती बरखा। आग सी जलती आसमान पर इंद्रधनुष दिखलाती बरखा। मोती भर भर बूंदों में धरा पर बिखराती बरखा। अंबर से आ धरती पर धरा की प्यास बुझाती बरखा। उषा। उठो भाई उठो बहना, उषा आई गई रैना। दिनकर सजकर रथ चढ़े मिलाने प्रियतम से नैना। किसले कूक भरने लगे छीन रैना की चैना। उठो भाई उठो बहना, उषा आई गई रैना। शुष्क समीर काजों का खोला कलियों की नैना। भंवर कुमुदनी पर मछलाया छीन वीना की चैना। उठो भाई उठो बहना, उत्साह आई गई रैना। वन स्थलियां खरे हो गए खिला खिला कर कलियां। खग विहग भी कर रहे मधुर घड़ी की मधुर बतियां। उठो भाई उठो बहना, उषा आई गई रैना। रवि सितारों को रश्मि पर धर भेजा जग को नैना। उषा निमंत्रण स्वीकार हुआ प्रभाकर चले खोल नैना। उठो भाई उठो बहना।
1: वेलकम बैक साथियों, मैं आशा करती हूँ कि स्तंभ सृजन की कविताएं आपको पसंद आई होंगी। तो अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्तंभ रोजगार सूचना में जानते हैं जॉब अपडेट्स। साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तकनीशियन पदों की भर्ती के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 6,565 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त उच्च अधीनस्थ सेवा पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना ने 10+2 बीटेक कैडेट भर्ती योजना के तहत 60 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है और आवेदन की अंतिम तिथि आज ही है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। साथियों, रोजगार सूचना में आज बस इतना ही। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक गीत फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: वेलकम बैक साथियों, वक्त हो गया है परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को जानने का। तो आइए स्तंभ समसामयिकी में हम जानते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। 27 जून 2026 को उदयपुर हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबस A320 ने भारत स्वदेशी गगन प्रणाली की सहायता से देश की पहली सफल जेट विमान लैंडिंग की। समसामयिकी में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक गीत फिल्म देवदास से श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

साथियों, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले जानते हैं डेली ट्रिविया के प्रश्न के उत्तर को। साथियों, प्रश्न था, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका उत्तर है नई दिल्ली। साथियों, इसी के साथ आप अपनी युवा साथी संध्या को दीजिए विदा। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए जोश, नए हर्षोल्लास और ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातों के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म धड़क 2 के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल ने। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने और संगीत दिया है जावेद मोहसिन ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म परम सुंदरी से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है सोनू निगम और कृष्णकली साहा ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, वहीं संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

इसे खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म तेरे इश्क में। इस फिल्म से इस गीत को अपनी आवाज़ दी है फहीम अब्दुल्ला ने। वहीं गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

अब सुनिए फिल्म थामा से सौम्यदीप सरकार और सचिन जिगर की आवाज़ में ये गीत। संगीत दिया है सचिन जिगर ने और गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म फाइटर से बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की आवाज़ में ये गीत, साथ में मेलोडी। गीत के बोल के हैं कुमार ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:55 हो रहे हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार होंगे शिव शंकर कुशवाहा एवं साथी। शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे ध्रुव कुमार। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे खेलकूद पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री लालमणि मिश्र का विचित्र वीणा वादन। और रात्रि 10:30 पर प्रसारित होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कल प्रातः 5:50 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेत खलिहान। 6:05 पर होगा चिंतन मनन। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे महिलाओं में अस्थि रोग, इस विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, भेंटकर्ता होंगे सचिन कुमार। कल सुबह 6:40 पर प्रसारित होगा रामचरितमानस गान। सुबह 7:00 आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्मृति संवाद में भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे बाबूलाल हरिजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:06 पर, दिन के 11:00, 11:30 पर कार्यक्रम गुलदस्ता में, दिन के 2:30 पर कार्यक्रम चित्रपट से के तहत, संध्या 5:30 पर, रात्रि 8:00 कार्यक्रम रजनीगंधा में, और रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम भाव गीत में। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम बज़्मे उर्दू। 10:30 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। कलाकार होंगी सृष्टि सुमन। दिन के 12:00 प्रसारित होगा शहरी महिला कार्यक्रम नारी लोक। दिन के 1:00 आप सुनेंगे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार होंगे राजेश कुमार पंडित। 1:30 पर आप सुनेंगे धारावाहिक गंगा के सुरताल की 9वीं कड़ी। आलेख होगा अशोक अंचल का। दिन के 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। कलाकार होंगे श्यामानंद झा। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। कल संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 प्रसारित होगा किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे वारिस हुसैन। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे महेंद्र मयंक का लिखा नाटक अकल का ताला। और रात्रि 10:00 प्रसारित होगा अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार। ये था आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 6:00 हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रामू का नमस्कार।
1: सभ्य भाई बहन का दीपा के भी नमस्कार। आप लोग का नमस्कार रामू भाई।
0: नमस्कार नमस्कार और हार्दिक स्वागत दीपा बहन। और सब बताइए क्या हाल समाचार है।
1: हाल समाचार तो सभ्य बढ़िया छो रामू भाई। गर्मी तो कम हो के नामे न लड़लो छो। घर से जेने निकले छियो कि छर छर पसीना टपका लगे छे। मानसून अलो छे पता चल रहे लेकिन कहाँ हो रो छे झमाझम बारिश हो। फिसिर फिसिर हाँ। कभी कदाल खाली आविर लो छो।
0: लेकिन ये फिसिर फिसिर भी जो है वो हाँ। गर्मी से बहुत राहत दिया
1: है। लेकिन मानसून मतलब की होले कि भर मन पानी पड़ना।
0: बिल्कुल तो इंतजार कीजिए थोड़ा।
1: हाँ,
0: इंतजार
1: का
0: फल मीठा होता है।
1: आज दो दिन पहले हाँ। रोज इंतजारे कर लो छियो।
0: तो वो जो है ना कि बारिश भी अपने समय से होगी और उसका भी आनंद हम लोग लेंगे। फिलहाल जो बारिश हुई है या मौसम में जो परिवर्तन हुआ है इससे भी बहुत राहत हुआ है।
1: परिवर्तन हो लो छे। हाँ हाँ।
0: और देखिए ऐसे तो हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है दीपा बहन। आज का दिन भी जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं जो पूरे विश्व में 29 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के खास अवसरों चुनौतियों और दुनिया के विकास में उनके महत्व को रेखांकित करना है कि नहीं।
1: एकदम एकदम।
0: और देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है दीपा बहन कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है क्या।
1: हाँ,
0: है
1: कि बोलो, नहीं हाँ।
0: अब देखिए पृथ्वी का वह हिस्सा जो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच स्थित है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है।
1: ठीक।
0: और यह क्षेत्र जो है वो अपनी अद्वितीय जैव विविधता अलग अलग संस्कृतियों और विशेष जलवायु के लिए जाना जाता है।
1: हाँ। और देखो उष्णकटिबंधीय देश के सामने आवे वाला विभिन्न चुनौती के तो बारे में छेबे करे यही सा जागरूकता बढ़ावे वास्ता ई दिवस मनेलो जाए छे। अब पृथ्वी के मध्य में स्थित क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलो जाए छे। अब भूमध्य रेखा आरु उत्तरी आरु दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका एशिया आरु ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग एकरा में शामिल छे। ई क्षेत्र में पूरा वर्ष गर्म रहे छे। आ ई क्षेत्र में तापमान 77 से 42 डिग्री फॉरेन हाइट के बीच रहे छे। आ ई क्षेत्र में भरपूर धूप पड़े छे रामू भाई। और यहाँ खाली दू ऋतु होई छे। एक ठो वर्षा ऋतु होलो और एक ठो शुष्क ऋतु होलो।
0: इसलिए तो ये कह सकते हैं हम लोग दीपा बहन कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो पूरी दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र का दिल है कि नहीं।
1: सही बोल लो।
0: और दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है।
1: हाँ।
0: अब देखिए ना अमेजन और कांगो जैसे विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो दुनिया को भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
1: जो कि कहलो जाए कि 20% पूरा दुनिया में वहीं से ऑक्सीजन हमरा सनी के मिले।
0: और उसके साथ ही क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित भी करते हैं है कि नहीं। और दुनिया की अधिकांश समुद्री जीवन की विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही पाई जाती है कि नहीं।
1: सही बोलो।
0: और दुनिया की लगभग 40% से अधिक आबादी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। और साथ ही साथ क्या है कि वैश्विक कृषि जैसे कि कॉफी हो गया चाय हो गया मसाला केला या फिर गन्ना और लकड़ी और खनिज संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों से आता है।
1: हाँ,
0: है ना। और यहाँ के खूबसूरत तट हों वन्य जीव और ऐतिहासिक स्थल जो है वो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं।
1: हाँ।
0: जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है ना।
1: हाँ।
0: और इसके साथ ही क्या है कि वनों की कटाई से जैव विविधता को नुकसान भी हो रहा है दीपा बहन, है कि नहीं। और वन कटने से तो हम लोग कई तरह के उसका दुष्परिणाम भी देख रहे
1: एकदम।
0: हैं
1: एकदम। यही जाए ना कि पेड़ लगावो जंगल बचावो
0: जी।
1: पानी और बिजली बचावो
0: जी।
1: कचरा कम करो प्लास्टिक के इस्तेमाल एकदम से बंद करी दो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कोई तो समझा ही नहीं छे की कर लो जाए।
0: अब देखिए सड़कों के निर्माण चाहे शहरीकरण या फिर मवेशी पालन के लिए जंगलों को काटा जा रहा है कि नहीं।
1: हाँ हाँ।
0: तो जंगलों के नष्ट होने से क्या है कि बहुत तरह के पशु हों पक्षी हों या फिर वनस्पतियां जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है कि नहीं।
1: हाँ।
0: और इसके लिए देखिए सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी इसके सामने है। अब क्या है कि वैश्विक संसाधन का केंद्र होने के बावजूद दुनिया की एक बड़ी गरीब आबादी भी जो है वो इस क्षेत्र में रहती है दीपावली, है ना। और गर्म और आर्द्र जलवायु, जैसा कि हम लोग शुरुआत में चर्चा भी किए कि वहां पर इस तरह के मौसम होते हैं, तो इसके कारण चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, हाँ, या फिर जीका वायरस हो जैसी संक्रामक बीमारी जो है, हाँ, वो इस क्षेत्र में तेजी से फैलती है,
1: हाँ,
0: जिससे कि स्वास्थ्य प्रणाली पर भी इसका भारी दबाव बनता है कि नहीं।
1: यही से याद दिलेलो जाए छे कि इलाका का बचाना छे
0: जी,
1: और यहाँ रहे वाला के मदद करना छे
0: बिल्कुल, हाँ। और इसके साथ क्या है कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन के कारण झुग्गी बस्तियों का निर्माण होने से,
1: हाँ,
0: बुनियादी सुविधाओं की कमी भी हो रही है कि नहीं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बचाने और उनके विकास को गति देने के लिए ऐसी कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना,
1: हाँ,
0: जिससे जंगलों को नुकसान न पहुंचे,
1: हाँ,
0: और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे,
1: बन
0: है कि नहीं।
1: हाँ, हाँ,
0: और इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में देखिए धूप और हवा भी उपलब्ध होती है, इसलिए सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं। मतलब कुल मिलाकर दीपा बहन, हम लोग यह कह सकते हैं,
1: हाँ,
0: कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो केवल एक उत्सव नहीं है,
1: हाँ,
0: बल्कि यह हमारे ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने का एक वैश्विक संकल्प है,
1: है
0: ना। देखिए प्रकृति, मानव और अर्थव्यवस्था का जो संतुलन इस क्षेत्र में है वह पूरी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए 29 जून का यह दिन हम लोगों को याद दिलाता है कि यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे,
1: हाँ,
0: तभी हमारी आने वाली, हाँ, पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा,
1: हाँ,
0: है कि नहीं।
1: सही बात, हाँ।
0: तो चलिए कार्यक्रम में आगे और भी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे दीपा बहन,
1: हाँ,
0: संध्या बेला है, तो एक बढ़िया सा देवी गीत से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं
1: जरूर।

0: जी
1: तो कितना बढ़िया लगल सुने में।
0: साजी साजी पूजा के थरिया।
1: हाँ अभी हम रोशनी के बातचीत के सिलसिला हिने जारी रहते, लेकिन होकरा से पहले कुछ जरूरी संदेश सुने छे।
2: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
6: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
8: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
0: जी, जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में। और देखिए दीपा बहन,
1: हाँ।
0: परंपराओं के निर्माण, संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में साक्षरता की भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है,
1: हाँ।
0: है कि नहीं?
1: हाँ।
0: यह सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत को लिपिबद्ध करके सुरक्षित रखने का भी सबसे मजबूत माध्यम है,
1: हाँ।
0: है कि नहीं? तो आइए एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से और हम लोग विस्तार से जानते हैं कि परंपराओं के निर्वहन में साक्षरता की भूमिका।
1: हाँ।
0: वार्ताकार हैं सुषमा गुप्ता, आइए इनकी बातों को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने।
9: हमारा भारत देश एक ग्राम प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति विभिन्न प्रकार की सही और गलत परंपराओं के निर्वहन से जुड़ी है। सही और गलत परंपराओं से जुड़ने का अर्थ यह है कि आज साक्षरता बढ़ने के कारण बहुत सारी चली आ रही परंपराओं का निर्वहन खतरे में पड़ गया है, उनका महत्व कम हो गया है या उनका पालन जरूरी नहीं रह गया है। उदाहरण के लिए, पहले हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था, परिवार के हर सदस्य के भविष्य की सुरक्षा थी, आपस में प्रेम था, परंतु आज परिस्थिति विपरीत है। बिरले ही कहीं कोई संयुक्त परिवार का उदाहरण मिलता है। हम दो और हमारे दो के नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। माँ बाप अपनी खून की कमाई से बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं और वे परंपरा के विरुद्ध प्रेम विवाह कर लेते हैं। माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाते हैं। क्या उच्च शिक्षा अथवा साक्षरता उन्हें यही शिक्षा देती है कि हमारे पूर्वज जिस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं उसकी मर्यादा को तार तार कर दें? शायद कदापि नहीं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सही परंपराओं के निर्वहन के लिए साक्षरता को वरदान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि अभिशाप के रूप में। अब हम आज के समय के आलोक में अभी भी चली आ रही कुछ गलत परंपराओं पर बात करें, जैसे कि महिलाओं, खासकर पर्दे में रहने वाली महिलाओं का घर से बाहर निकलने पर रोक, उनका प्रसव घर में ही करवाना, घर की कच्ची शौचालय का उपयोग करना, भयंकर बीमारियों का आमंत्रण देना है। आज के साक्षर युग में इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी सुदूर गांवों में यह परंपरा है कि दूल्हे की उंगली को विवाह करने जाने से पहले घायल कर उससे खून निकाल कर उस खून से उसका तिलक किया जाता है। अगर टेटनस हो गया तो यह कैसी शादी होगी? यह परंपरा गलत है। साक्षरता बढ़ने के साथ इस पर रोक लगनी चाहिए। आज भी महिलाओं के बीच ओझा, गुनी, साधु, फकीर काफ़ी मशहूर हैं, जबकि ये उन्हें सिर्फ ठगते हैं। आज के वैज्ञानिक साक्षर युग में बांझपन और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन महिलाओं के अंदर यह विश्वास बैठा हुआ है कि सिर्फ साधु बाबा औघड़ फकीर ही उनकी बांझपन दूर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत परंपरा है। आज शिक्षा के विकास के साथ साथ देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इस गलत परंपरा को हमें मिटाने में काफ़ी सफलता हासिल हुई है, लेकिन अभी और प्रयास की आवश्यकता है। गाँवों में आज भी सैकड़ों लोग सांप, बिच्छू एवं अन्य जहरीले जीव जंतुओं के काटने से मर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ओझा जी उनका झाड़ फूँक कर रहे थे। अस्पताल ले जाने पर ठीक नहीं होगा, ओझा जी ही विष पी जाएंगे और पीड़ित व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। काहे को पीड़ित व्यक्ति जिंदा होगा? पता चला कि ओझा जी ही भाग गए। आज हमें बढ़ती साक्षरता के मद्देनज़र इस ओझा गुनी वाली हानिकारक एवं विनाशकारी परंपरा को समाप्त करना होगा। विज्ञान के महत्व को समझना और समझाना होगा। अब हम फिर कुछ अच्छी परंपराओं के निर्वहन के लिए साक्षरता की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर गौर करें। आज हम विदेशों में कारगर सोशल सिक्योरिटी एवं हेल्थ कार्ड योजना परंपरा इत्यादि के विषय में पढ़ने और सुनने को मिलता है। अपने भारत देश में भी अब लगभग मिलती जुलती स्वास्थ्य योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना कारगर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कुछ प्रगतिशील देश अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा देने की परंपरा का मिसाल पेश कर रहे हैं, आज हम भी शिक्षित नागरिक होने के नाते अपने विवेक से उचित अनुचित परंपराओं के निर्वहन के लिए आगे आ सकते हैं। बाल विवाह रोक सकते हैं, विधवा विवाह को बढ़ावा दे सकते हैं, सती प्रथा बंद कर सकते हैं, महिलाओं को भी माँ बाप की मृत्यु पर उन्हें मुखाग्नि देने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, नारी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं, बाल श्रमिक पर रोक लगा सकते हैं। साक्षरता स्वास्थ्य के पहलू पर भी जोरदार असर कर रही है। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गौमूत्र की महत्ता कम है, लेकिन आज इसका उपयोग करना खतरे से खाली नहीं है। पूरा वातावरण और वायुमंडल इतना प्रदूषित हो चुका है कि क्या शुद्ध है और क्या शुद्ध अंतर कर पाना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मृत्यु दर घट रही है, औसत आयु बढ़ रही है। इसका कारण है गलत परंपराओं के निर्वहन से दूर रहना। पुराने जमाने में पुरुष खेतीबाड़ी का काम निपटाने के बाद दोपहर में जब लौटते थे तो नहा धोकर भोजन करते थे। औरतें सभी पुरुषों के खा लेने के बाद ही भोजन करती थीं। अधिकतर महिलाएं तो रोज की नियमित पूजा पाठ के कारण सुबह से ही भूखे पेट रहती थीं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाया करती थीं। आज डॉक्टर भूखे पेट रहने की कदापि सलाह नहीं देते हैं। यह साक्षरता का ही प्रभाव है। हम अधिक दिनों तक स्वस्थ रह पाते हैं और जिंदा रहते हैं, तो क्या किया जाए? पहले भगवान की पूजा की जाए या पहले जलपान किया जाए? शिक्षा हमें यह बताती है कि जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो भगवान की पूजा कर पाएंगे। शायद ठीक ही कहा गया है, भूखे भजन न होई गोपाला। पुरानी परंपरा के अनुसार साधु महात्मा, सिद्ध पुरुष, सिद्ध संत इत्यादि लोग इतना अधिक कंदमूल, मेवा, दूध, फल ग्रहण कर आत्म ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे कि कई दिनों तक वे बिना खाए पिए रह सकते थे, किंतु आज ऐसा संभव नहीं है। सामने अर्थी तैयार करके हम पहले रख लें, फिर इस

0: परंपरा के निर्वहन के बारे में सोचें। साक्षरता सही परंपराओं के निर्वहन में कभी बाधक नहीं है, बल्कि उनके निर्वहन में हमें बढ़ावा देती है। हमारे समाज में आज भी पिछड़ापन, कुरीतियों का अनुपालन, विश्वास की कमी, ढोंगपन, छलावा, दिखावटीपन, संकीर्णता इत्यादि का बोलबाला है। आज हम साक्षर हैं, हमें इसे दूर करना होगा। अच्छी परंपराओं को लागू करने के लिए और मजबूती से सक्रिय होना पड़ेगा। छिछली आधुनिक परंपराएं मोबाइल, इंटरनेट, गूगल, वाईफाई के अंधकार में पहलू को विराम देना होगा, एवं दूसरी तरफ इसके स्वर्णमयी पहलू को और अधिक विकसित करते हुए इसको बढ़ावा देना होगा। अब मैं क्या कहूँ, मैं खुद कभी कभी उधेड़ बुन में पड़ जाती हूँ कि किस परंपरा को जारी रखूँ और किसे निरस्त करूँ। पुराने ज़माने में लोग अतिथि का चीनी के शरबत से स्वागत करते थे, मीठा गुड़ के साथ पानी देते थे, तब डायबिटीज़ कहाँ थी, लेकिन आज तो हर खाने में डायबिटीज़ है। क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? पुरानी परंपरा के अनुसार आज घर में आए अतिथि को अगर चीनी के शरबत से अथवा एक ढेला गुड़ के साथ पानी दिया जाए तो वह उस प्रारंभिक अतिथिपनी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात चीनी अथवा गुड़ के साथ पानी पिलाने की परंपरा को साक्षरता के मद्देनजर विराम देना होगा। आज यह परंपरा सचमुच मान्य नहीं है। आज हम शिक्षित हैं, टीबी, कैंसर, पीलिया का इलाज कुशल चिकित्सक से कराएंगे, ना कि झाड़ फूक जैसी जड़ी बूटी या मोझागुनी से। पुराने समय में दुल्हन के शरीर पर काफ़ी वजनी आभूषण लदे होते थे एवं उसे घूंघट में रहना पड़ता था। बिजली की कमी थी अथवा गांव में बिजली थी ही नहीं, आदत सी बन गई थी दुल्हन को घुटन भरी जिंदगी बिताने की। रात भर हाथ में पंखा लेकर पति को हवा करते रहती थी। आज यह संभव नहीं है। वह पंखा से हवा तो नहीं करेगी बल्कि पंखे से मारेगी। अतः इस दकियानुसी परंपरा को दूर करना होगा। नवजात शिशु का घर में प्रसव के बाद गंदे धारदार हथियार से नाल काटने के कारण टेटनस रोग हो जाता था। इस गंदी एवं घातक परंपरा को बंद करना होगा एवं साक्षरता का अभियान चलाकर कुशल अस्पताल की शरण में जाने को प्रेरित करना होगा। मैं अच्छी तरह स्वीकार करती हूँ कि हमारी दादी नानी जो नवजात शिशु के लिए काजल तैयार करती थी वह काफ़ी गुणी एवं उपयोगी होता था, परंतु आज के डॉक्टर इसे स्वीकार नहीं करते हैं और शिशु की आंखों में काजल नहीं लगाने की सलाह देते हैं। अब आप ही मुझे बताएं मैं किस परंपरा का निर्वहन करूं? दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूं, मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है कि किस परंपरा को अपनाऊँ और किसे विसारूँ। आए हम फिर एक बार अपने संयुक्त परिवार की परंपरा की ओर बढ़ें। जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं था, परिवार नियोजन क्या होता है चर्चा नहीं थी। पूर्वजों का मानना था कि परिवार हमारी शक्ति है। अधिक व्यक्ति अर्थात अधिक श्रम, अधिक आमदनी एवं ताकत यानी खुशहाली का जीवन। आज बात ठीक उल्टी बनती है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, बच्चों की उच्च शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र, दोनों अपनी अपनी जगह शत प्रतिशत सही है। आज साक्षरता हमें यह संदेश देती है कि पुरानी परंपरा को अविलंब बंद करो और छोटे परिवार की कल्पना करो। बनने के पहले अपना कब्र खुद खोद लो अथवा अर्थी तैयार कर रख लो। आजकल तो अधिकतर लोग अपने जीवन में ही अपना श्राद्ध कर्म यह सोच कर कर लेते हैं कि शायद उनके मरणोपरांत कोई उनका श्राद्ध कर्म करेगा अथवा नहीं। निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों प्रक्रिया अपनी अपनी जगह ठीक है। श्राद्ध कर्म के खर्च के लिए पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ वक्त की कमी है। आज बच्चों को अपने स्वजनों के लिए भी समय नहीं है, तो क्या माना जाए? पुरानी परंपरा जो 13 दिनों में श्राद्ध कर्म पूजा पूरा करने की है उसे समाप्त कर दिया जाए। शायद नई परंपरा को ही अपनाने को विवश होना पड़ेगा। यह आज की साक्षरता के विकास की मांग है। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी परंपराओं एवं साक्षरता में अन्योन्याश्रय संबंध है। सिर्फ हमारे विवेक की ज़रूरत है, किसे अपनाएं, किसे भूलें या त्यागें। आज हमारा विवेक भी काफ़ी विकसित हो चुका है। मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि समय के अनुसार परंपरा का अनुपालन अर्थात निर्वहन सुनिश्चित करने हेतु साक्षरता रूपी अलौकिक विवेक का बुद्धिमत्तापूर्ण सिर्फ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
1: जी
2: कितना अच्छा जानकारी पहले है मसनी
1: कि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं छे।
2: बिल्कुल,
1: यही सा शिक्षा बहुत जरूरी छे और सभ्य का प्राप्त करना चाहिए
2: जी।
1: तो यही सा सुषमा गुप्ता का हेकरा वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीत संगीत तो बीच बीच में होता रहना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: तो यही सा हम असनी अभी एक तो पूरी भी सुनै छी
2: जी।

0: तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।
1: अच्छा।
0: सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है, और
1: अच्छा।
0: पूर्वानुमान की अवधि में 60 से 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। और इसके साथ ही कुछ किसान भाइयों के लिए सामान्य सलाह भी है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान भाई जो हैं वो फसलों में नमी संरक्षण और जल निकास की उचित व्यवस्था करें,
1: अच्छा।
0: और फसलों की नियमित निगरानी करना है, और इसके साथ ही उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो केवल साफ मौसम में ही करना है, और
1: अच्छा।
0: खेतों में खरपतवार नियंत्रण और आवश्यक कृषि कार्य जो है वो समय पर पूरा करना है। इसके साथ ही साथ क्या है कि कुछ विशिष्ट सलाह भी है
1: हाँ।
0: कि जैसे चावल, वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को ये सलाह है कि ऊंची भूमि में धान की खेती न करें। जिन
1: अच्छा।
0: किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं, और बीज
1: अच्छा।
0: स्थली में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करना है। खास करके ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। और इसके साथ ही कुछ पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है दीपा भवन,
1: अच्छा।
0: कि गलघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है, और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं, और
1: अच्छा।
0: इसके साथ ही नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले 2 घंटा पानी में फुला लें, और पचास
1: खराबी
0: ग्राम
1: करे
0: खनिज
1: चीज
0: मिश्रण
1: सही
0: और
1: बोले।
0: 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला करके देना है।
1: अच्छा।
0: और अब तो समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का,
1: हाँ।
0: तो आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाही और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, अच्छा लगा। सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज खोज कर ऐसे कोर्सेस को हम लाएंगे। और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडी।

0: स्टडीज, जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूं, 1800-121-0051, 1800-121-0051। और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002। और एक वेबसाइट भी है, www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआ।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना, न कोविड था, न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल, नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें, 9431899002, 9431899002, और 1800-121-0051। डॉक्टर नीरज बताइए, हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है एमबीबीएस का। जैसे इस कोर्स में, इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है और अस्पतालों में, इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए, टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
0: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी, या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं। ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह

0: सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो ड्यूअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग themselves। और इस पे हमारे टीचर हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 ही सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार
3: जी।
4: रामू भाई, एक तो पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुने छे अनुभवी किसान से, जेकर भेंट वार्ताकार छेके सुधीर प्रसाद सिंह और भेंट करता छेके मोहम्मद शाहनवाज आलम।
3: आइए इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने।
5: श्रोताओं, हम समय समय पर आपको अनुभवी किसान से मिलवाते रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक अनुभवी किसान है।
6: धन्यवाद। मैं शंभूगंज थाना से, शंभूगंज प्रखंड के अंतर्गत से आया हूँ। मेरा नाम सुधीर प्रसाद सिंह है और मैं वैज्ञानिक ढंग से कई वर्षों से खेती करते आ रहा हूँ।
5: सुधीर जी, आप वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं, इससे तो ये पता चलता है कि आप शिक्षित हैं। तो आप इस खेती में कैसे आए, क्या आपको रुचि आई जो आप इसमें आए?
6: देखिए, हम 1985 में ही भागलपुर यूनिवर्सिटी से BA किए, उसके बाद MA किए और कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी हमने काम किया
5: जी।
6: लेकिन हमको उसमें रुचि नहीं लगा।
5: अच्छा अच्छा।
6: और हम खेती पर उतर आए और बहुत सुंदर ढंग से हमारे पास 9-10 एकड़ खेती है और मैंने बहुत सुंदर ढंग से वैज्ञानिक ढंग से खेती करना प्रारंभ किया
5: जी।
6: क्योंकि मैंने देखा कि नौकरी में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था और नौकरी मिल नहीं रहा था, इसलिए खेती को मैंने अपनाया और वैज्ञानिक ढंग से खेती करना प्रारंभ किया। और आज मैं इस वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के बाद मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ
5: जी। यानी आपने अपने रुचि के अनुसार इस खेती को अपनाया
6: जी। जी,
5: तो ये तो बहुत अच्छा है, आदमी को अपने रुचि के अनुसार ही काम करना होता है और करना भी चाहिए। तो सुधीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में क्या लगाना चाहिए, कौन सी फसल हम लगाएं जो हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद हो?
6: अभी तो धान का सीजन चल रहा है
5: जी। जी, धान का सीजन,
6: धान का सीजन चल रहा है, खरीफ का हम लोग खेती करने के लिए तैयार हो चुके हैं। किसानों को मैं कहना चाहूँगा कि आप संकर धान की खेती करें।
5: अच्छा अच्छा।
6: संकर धान की खेती करें और श्री विधि से करें।
5: अच्छा, ये
6: श्री विधि से खेती करने में बहुत फायदा है और अधिक से अधिक उपज होता है।
5: अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि ये श्री विधि है क्या, कैसे करते हैं ये
6: श्री विधि
5: जी?
6: जो हम करते हैं खेती, श्री विधि को हम पंक्ति से लगाते हैं।
5: अच्छा,
6: लाइन से लगाते
5: जी,
6: हैं
5: जी, जी,
6: लाइन से लाइन की दूरी,
5: माने
6: लाइन से लाइन की दूरी
5: कितनी होनी चाहिए,
6: 12 इंच,
5: 12 इंच।
6: और कतार से कतार की दूरी भी 12-13 इंच होनी चाहिए। इसमें हम एक एक पौधा लगाते हैं संकर धान का, एक एक पौधा, और इस धान के पौधे से 50 से 60 और 70 से 80 तक के किल उसमें प्रोडक्शन होता है, यानी किला उसमें प्रोडक्शन होता है।
5: जी जी।
6: और वह धान जो है हम हमें लाइन से लगाने से, श्री विधि से लगाने से, लाइन से लगाने से उसमें निकोनी गुरोनी करने में काफ़ी सहूलियत होता है। और जब हम परंपरागत खेती करते थे तो उसमें हमें बीज की मात्रा अधिक लगता था, रोपनी अधिक लगती थी, लेबर अधिक लगता था, इन सारे चीज़ों से बचत होता है।
5: अच्छा, मतलब आपका कहना है कि
6: श्री विधि को किसान अपना
5: बहुत ज्यादा बचत हो जाती
6: है, बहुत ज्यादा बचत है
5: हर तरीके से, लेबर में, बीज में, सभी चीज में।
6: जी जी,
5: ठीक है। तो और बताइए कि अभी और कौन कौन से फसल लगानी चाहिए, या अगर जो भी फसल हम लगा रहे हैं तो उसमें खाद वगैरह किस तरह का डालें?
6: हाँ,
5: अच्छा उपज।
6: खाद वगैरह तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करें।
5: अच्छा अच्छा।
6: जैविक खाद के लिए अभी खेत की जुताई कर ढांचा को उसमें बो देते हैं। ढांचा रोपनी के वक्त में 2 फीट 2.5 फीट का हो जाता है और उसको हम लोग जोत के गला देते हैं। तो जैविक खेती माने खाद उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और मैं किसानों को एक सलाह दूंगा
5: जी जी जी
6: कि इस जैविक खेती पर ज्यादा ध्यान दें। अच्छा। क्योंकि रासायनिक खाद से दिन और प्रतिदिन जमीन की गुणवत्ता जो है कम होते जा रहा है।
5: ये तो बहुत सही बात आपने बताई कि हमें तो जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखनी होगी।
6: हाँ।
5: तभी हम अधिक उपज ले सकते हैं।
6: और एक सलाह और मैंने किसान को दूंगा कि आप अपने खेत की मिट्टी का जांच करा लें।
5: अच्छा, ये जांच कैसे किया जाता है, किस तरह हम कर पाएंगे?
6: देखिए, जब हम मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ने क्या करता है कि खून, पैखाना, पेशाब का जांच करता है। जांच करता है और जांच के बाद दवाई लिखता है।
5: बिल्कुल।
6: तो वही तरीका है मिट्टी का जांच कि मिट्टी का जांच जब हो जाएगा, जब उसका रिपोर्ट आ जाएगा वैज्ञानिकों के द्वारा कि आपके खेत में, आपके जमीन में किस चीज की कमी है, पोटास की कमी है कि जस्ता की कमी है कि जिंक की कमी है, जिस चीज का भी कमी है उसका अनुशंसा किया जाएगा और उसी के अनुसार हम उसमें खाद, रासायनिक खाद डालेंगे।
5: तो ये हमें बताइए कि ये हम जांच कहाँ करा सकते हैं? हमारे
6: जांच जैसे कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र बांका है, कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर है, हर जगह, हर प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है और वहाँ मिट्टी जांच का प्रयोगशाला है। हम नमूना अपने खेत से ले जाएं और वहाँ वैज्ञानिकों को दें, प्रयोगशाला में दें और वहां से हम उसका रिपोर्ट कार्ड लें।
5: जी, मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा हम जांच कराकर अपनी रिपोर्ट हासिल करके उसी अनुसार हम फिर अपने खेती को कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं।
6: जी जी।
5: तो और हमें ये बताइए कि धान के साथ साथ और अभी हम क्या लगा सकते हैं? धान के तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि श्री विधि से हम करें, और क्या बताइए?
6: धान के साथ अभी धान के फसल जैसे धान के साथ जैसे ऊंचा जमीन है
5: जी,
6: जहाँ की पानी का निकासी होता है, ऊंचा जमीन है, वहाँ हम अरहर की खेती करें क्योंकि दलहन की समस्या जो है और बड़ा जटिल होते जा
5: रहा है। हाँ, अभी तो बहुत
6: जटिल होते जा रहा है। दाल की महंगाई चरम सीमा पर
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: किसान के पकड़ से बाहर होते जा रहा है। इसलिए हम दलहन के ओर झुकाव दें और दलहन को लहार का खेती करें, अरहर की खेती करें, और अरहर को मेहर पर भी हम लगा सकते हैं, धान के मेहर पर भी लगा दें।
5: अच्छा अच्छा, वहां भी
6: धान के भी मेहर पर लगाकर कुछ न कुछ दलहन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऊंची जमीन है तो ऊंची जमीन में हम थोड़ा सा मिट्टी ऊपर करके यानी पलगा बना के और उस पर लहर की खेती करें, लहर को डोब दें, लगा दें और पानी निकासी की उत्तम व्यवस्था कर दें, देखिए लहर एक नंबर होगा।
5: तो ये अगर हमारे पास व्यवस्था सही रहेगी तो हम दलहन फसल को भी अच्छी मात्रा में उपजा सकते हैं। और अभी हमारी जरूरत भी है कि दलहन फसल ज्यादा से ज्यादा हो। जी,
6: निश्चित
5: रूप से। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और बताइए हमारे किसान भाइयों को कि क्या क्या कर सकते हैं अभी?
6: और सब्जी लगा सकते हैं,
5: सब्जी में अभी
6: सब्जी में भिंडी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं।
5: जी जी,
6: कुछ दिन के बाद बैंगन की नर्सरी तैयार करके आप बैंगन को लगा सकते हैं। किसान के साथ तो एका बहुत सारे विकल्प हैं
5: जी, जी।
6: अगर करना चाहें तो मिट्टी से सोना किसान ही उपजाता है।
5: जी हाँ, ये तो सही कहा। तो ये अगर हमारे किसान आज बहुत से ऐसे हैं जो लगभग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको कैसे जानकारी होगी कि हाँ अभी हमारे पास ये विकल्प है, या किससे जानकारी लें? सब लोग कृषि वैज्ञानिक के पास तो लगभग नहीं जा सकते।
6: देखिए किसान किस सरकार जो है कृषि विज्ञान केंद्र और हरे प्रत्येक जिला में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मा नाम की एक संस्था सरकार की है
5: जी, जी।
6: आत्मा नाम की संस्था है जिसका उद्देश्य ही है कि किसान को
5: जी।
6: खेती का उन्नत गुण सिखाना
5: जी जी।
6: और प्रत्येक हमारे बांका जिला में बहुत कारगर ढंग से ये आत्मा काम कर रही है और आत्मा हमारे बांका जिला में प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन कर रहा है और किसान पाठशाला के आयोजन के माध्यम से किसानों को जैविक खेती से लेकर सारे खेती का
5: जी।
6: किस तरह हम आत्मनिर्भर खेती में हो सकते हैं
5: जी, जी, जी।
6: किस तरह खेती करके हम
3: जी निश्चित रूप से इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी सुधीर प्रसाद सिंह ने। अगर इस तरह से किसान भाई हमारे खेती अपना जो खेती का कार्य है वो करते हैं तो उनकी आमदनी अच्छी होगी उपज भी अच्छा होगा है कि नहीं
4: हाँ, एकदम।
3: और इसी के साथ श्रोताओं अब हमारा आज का ग्राम जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सबको रामू का नमस्कार।
4: सभी का दीपा के भी नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजने को हैं। अब हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र, कहा सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करे कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित, दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1042 नवचयनित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 274 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 768 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा विज्ञान विषय के सहायक आचार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करें।
1: जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000-10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके इस पर हमें काम करना है।
0: झारखंड में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन पर पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी 30 जून को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री और उनके बेटे ने ईडी को पत्र लिखकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। गौरतलब है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने इससे पहले 23 अगस्त 2023 को रोहित उरांव के रांची आवास स्थित 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश M.S. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वयं 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करें। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोई नई प्रगति हुई है तो उसकी विस्तृत जानकारी भी शपथ पत्र में उपलब्ध कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज धनबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ निर्देश दिया है कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। फर्जी दस्तावेज के जरिए नाम जुड़वाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी में वैसे मतदाता भी आते हैं जो दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं लेकिन भारत की मतदाता सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है। विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।
2: कल से आपका रिजर्वेशन फॉर्म फिल करने वाला कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पहले इंडिया में था भारत नागरिक, यहाँ से 200 देश जाके वहाँ नागरिकता प्राप्त कर लिया, उनका नाम भी आएगा नहीं। बाहर का देश से इंडिया में आया, उनका अभी तक यहाँ नागरिकता प्राप्त नहीं हुआ, उनका नाम भी नहीं आएगा। ये सारा प्रोसेस है केवल यहाँ का भारत का नागरिक के लिए।
0: जामताड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई और छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान भागवत झा आज़ाद इंटर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्यामली फौजदार ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
3: हमारे महाविद्यालय पर SIR को लेकर जागरूकता कार्यशाला एवं रैली निकाली गई। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मतदाता सूची, छात्र छात्राओं को नागरिकता के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्हें अपने तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को SIR को लेकर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।
0: नीट UG परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट यूजी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जाँच कर रही है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सल संगठनों की ओर से मनाए जा रहे दमन विरोधी सप्ताह के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने ऑपरेशन ट्रैक हॉक के तहत 25 जून से चक्रधरपुर और मनोहरपुर रेलवे स्टेशनों के बीच नक्सल प्रभावित रेलखंड में ड्रोन के माध्यम से विशेष निगरानी एवं क्षेत्र प्रभुत्व अभियान शुरू किया है। आज जारी बयान में रेलवे प्रशासन ने बताया है कि विशेष सुरक्षा अभियान का उद्देश्य हर स्तर पर रक्षा सुनिश्चित करना है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया गया है। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में अज्ञात बीमारी से आज तड़के 5वीं मौत हुई। इसके साथ ही पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रिम्स में इलाजरत कुछ अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार को इलाज के लिए 4 बार रेस्क्यू किया गया। वहीं मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर आरके रंजन ने बताया कि सभी मृतकों के विसरा को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने भूली बाईपास रोड स्थित एक मैरिज हॉल को अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने जानकारी दी कि निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।
4: हम लोगों ने उनको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है कि वो स्वतः उसको डिमोलिश कर लें, और अगर 15 दिन में स्वतः डिमोलिश नहीं करते हैं, और जो एक दूसरा है कि 10 लाख रुपए का फाइन जो लगा है, अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद हम लोग उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करें। बाकी अदर अपील कर सकते हैं, वो कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हैं, पर ये उनको प्रॉपर 2 महीने का प्रॉपर टाइम दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई।
0: पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। धनबाद के जगन्नाथ मंदिर में आज धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की स्नान यात्रा पवित्र जल से संपन्न होने के साथ ही वे 15 दिनों के लिए अज्ञातवास में चले जाएंगे। इसके बाद 16 जुलाई को धार्मिक विधि विधान के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी।
5: सुबह सेवा जैसे पूजा के बाद भगवान ने रत्न सिंहासन छोड़कर अपना स्नान वन में 108 घड़ा जल से सुगंध से स्नान करेंगे। 5 बजे के बाद अज्ञातवास जाएंगे। 15 तारीख को नेत्र उत्सव बना जाएगा और 16 तारीख को रथ यात्रा होगा।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, सभी मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का करें कार्य। राज्य के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव नहीं हुए उपस्थित। दोनों ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय। झारखंड उच्च न्यायालय में भूमि सर्वेक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हुई सुनवाई। विभागीय सचिव को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। पलामू में अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मेडिकल टीम जांच में जुटी। मृतकों के विसरा को जांच के लिए रखा सुरक्षित। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गर्जन के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:11 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक गीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए शिवशंकर कुशवाहा एवं साथियों की आवाज़ में लोकगीत। आरंभ में प्रस्तुत है देवी गीत।

0: और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये लोकगीत।
1: हमारा जमीरिया ला

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम, कलाकार थे शिवशंकर कुशवाहा एवं साथी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:25 हो रहे हैं। 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार। उसके बाद आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य में प्रस्तावित विभिन्न राजकीय उच्च पथ योजना, पुल निर्माण समेत विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में सड़क संपर्कता को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सड़क योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौधरी का आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 जुलाई को पटना मेट्रो परियोजना के तहत मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो रेल के परिचालन के लोकार्पण की घोषणा की है। नई दिल्ली रवाना होने से पहले आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर कराए जाएंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव ईवीएम से होगा और आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा।
1: सारी तैयारी चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में। विभाग के स्तर से पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है। रोस्टर चूंकि 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। और इसके अलावा बाकी जो चुनाव से संबंधित जो सामान्यतः प्रश्न रहते हैं लोगों के मन में, चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर के समय पर जाकर चुनाव का काम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराए जाएंगे। मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने हैं, लोगों को सहूलियत होगी, तेजी भी आएगी।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान

0: देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में के दौरान आरोग्य सेतु के दूसरे चरण आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक समेत कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और देश में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को लोकप्रिय बनाना है। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री यादव पटना में सहकारिता सप्ताह समारोह के उद्घाटन और जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के माध्यम से पैक्स और जमीनी स्तर की सहकारी संस्थानों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
1: सहकारिता मंत्रालय 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सहकारिता समारोह मनाने का काम किया है। बिहार के राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2026 के तहत बिहार में भी सहकारिता नीति 2026 जल्द ही लागू है। इसको बड़ा करके 5 करोड़ करना है। इस अभियान में हम सब जुटे हैं। चूड़ा का प्रोसेसिंग करना है, पेट्रोल पंप खोलना है, गैस एजेंसी खोलना है, जैसे और भी कई कार्य करने के लिए पैक्स को प्रेरित करने का काम किया है।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन भारत सरकार की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार 4 से 9 जुलाई तक स्वर्गीय खामेनेई के जनाजे और उन्हें दफनाने की रस्म की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwadi at 90.
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय

0: जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के विस्तार ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बना दिया है। तेलंगाना के मेडचल में विकसित भारत स्टूडेंट कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि तकनीक के इस दौर में राजनेताओं को भी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।
1: जब कंप्यूटर आया, अवेयरनेस की दुनिया आगे आई, तो आज हर व्यक्ति अपने राइट के साथ साथ, अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने राइट के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो गया है, और अवेयरनेस ने निश्चित रूप से लोगों को जागरूक किया है। तो हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको अब ये अधिकार नहीं है कि हम कुछ कह दे और जनता भूल जाए। जनता याद रखती है और सही समय पर चोट भी करती है, और ये मुझ पर भी लागू है, यानी भाजपा पर भी, और ये सभी दलों पर लागू है।
0: राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसके प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधुबनी एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है। साथ ही शहर में BSNL सेवा भी प्रभावित हुई है। रोहतास जिले में आज दोपहर बाद हुई भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल समेत कई प्रमुख कार्यालयों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड अंतर्गत धौरी गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किशोरी की मौत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। विधानसभा अध्यक्ष नगर के ऐतिहासिक लाल चौक भी गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सभी को आकर्षित और प्रभावित करती है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवा गढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान ये सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर आज सुबह दो चारपहिया वाहनों के आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह आगलगी की घटना में 50 लाख रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।

0: किशनगंज के बहादुरगंज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी में शामिल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारे गांव में कल हुई एक युवक की हत्या के मामले में 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ राकेश कुमार ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। सीवान के कचहरी दुर्गा मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी किया गया हार बरामद कर लिया गया है। कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शरीफगंज में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जहानाबाद जिले के 41,713 किसानों के बैंक खातों में 8,34,26,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसानों को खरीफ फसलों की बुआई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य कृषि निवेश की व्यवस्था करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने किसानों से EKYC और भू सत्यापन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी कराने की भी अपील की, ताकि भविष्य में उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित जन सहयोग सह जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा 121 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया तथा 702 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, श्रम, शिक्षा, कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। जिला प्रशासन ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के घर के निकट उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने जिलावासियों से अपील की है कि वो आगामी शिविरों में भी अधिक से अधिक संख्या

0: भाग लें तथा केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की ओर से सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्याओं में महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों के प्रति सजग रहने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों से सहायता लेने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण अर्थात संबल योजना के अंतर्गत आयोजित प्रखंड स्तरीय जन सहयोग सह जन कल्याण शिविर में 6 दिव्यांग जनों के बीच निःशुल्क बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सहायक उपकरण उपलब्ध होने से दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार तथा दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक सुविधा के साथ भागीदारी कर सकेंगे। लाभार्थियों ने भारत सरकार के इस प्रयास के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे उनकी आवाजाही पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति, नमामि गंगे, खेल विभाग, महिला विकास निगम तथा जिला आयुष के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय खेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, विभिन्न विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षक अमर कुमार ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव भी कम होता है और व्यक्ति स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने का संकल्प भी लिया। जहानाबाद जिले में मुहर्रम शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया तथा लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ड्रोन, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा दल, अग्निशमन वाहन तथा जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रखा गया था। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिलेवासियों, विभिन्न अखाड़ा समितियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग की सराहना करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भविष्य में भी इसी तरह सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आभास रंजन।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:52 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज के कार्यक्रम में सुने ध्रुव कुमार की आवाज़ में सुगम संगीत। आरएम में प्रस्तुत है गोपालदास नीरज का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ध्रुव कुमार की आवाज़ में सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म जवान के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म लापता लेडीज से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रशांत पांडे ने। वहीं संगीत से सजाया है इस गीत को राम संपत ने।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
1: करो।
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म स्त्री 2 से। इस गीत को अपनी आवाज दी है मधुबंती बागची और दिव्य कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

0: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the eVitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under rupee 1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the eVitara today. Visit your nearest Nexa showroom. Nexa.
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म द फैमिली स्टार से सचिन टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में ये गीत. संगीत दिया है गोपी सुंदर ने और गीत के बोल लिखे हैं विवेक ने.

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल कूद पर आधारित खेल खिलाड़ी।

श्रोताओं नमस्कार। खेल जगत के तमाम छोटे बड़े और उच्च खबरों को समेटे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आपका स्वागत है और खेल खिलाड़ी के नए अंक को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त मिलिंद गुंजन। स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक खेल गतिविधियां, खेल जगत की रोचक खबरें, स्पोर्ट्स कॉर्नर में एक बार फिर से हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की और साथ ही भारत आयरलैंड T20 श्रृंखला की। और कार्यक्रम के आखिरी स्तंभ में हमारे सवाल आपके जवाब में होगी आप सबों के खेल ज्ञान की परीक्षा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल जगत के ताजा तरीन हलचलों से हमारा नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां में।

और खेल गतिविधि की शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खबर से। फीफा विश्व कप 2026 में रविवार को ग्रुप दौर का रोमांचक सफर खत्म हो गया। 72 ग्रुप मैचों में रिकॉर्ड 215 गोलों के बाद 48 में से 32 टीमें नॉकआउट दौर यानी राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को सबसे अनुकूल ड्रॉ मिला है, जबकि 7 यूरोपीय दिग्गज टीमें एक ही हिस्से में फंस गई हैं। नॉकआउट दौर में अर्जेंटीना के साथ इंग्लैंड की किस्मत के दरवाजे भी खोल दिए हैं। नॉकआउट के समीकरण को देखें तो अर्जेंटीना के लिए लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का रास्ता आसान दिख रहा है। अब उसका मुकाबला पहली बार नॉकआउट में पहुंची केप वर्दे से होगा। इसे जीतने के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया या मिस्र से भिड़ेगी। क्वार्टर फाइनल में सामने कोलंबिया हो सकती है, यहां जीते तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड या ब्राजील से सामना संभव है। ऐसे में अर्जेंटीना 1962 में ब्राजील के बाद लगातार दो बार विश्व कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन सकती है। दरअसल नॉकआउट के मुकाबले दो हिस्से दाएं बाएं में बांटे गए हैं। यूरोप की लगभग सभी सबसे मजबूत टीमें फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, क्रोएशिया और बेल्जियम एक ही तरफ यानी बाईं तरफ आ गई हैं। उनके साथ मेजबान अमेरिका और कनाडा भी इसी तरफ हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये बड़ी टीमें फाइनल तक पहुंचने से पहले ही आपस में टकरा कर एक दूसरे को बाहर कर देंगी। इसके विपरीत दूसरे हिस्से यानी दाईं तरफ का रास्ता काफी आसान नजर आ रहा है। इस तरफ दक्षिण अमेरिका की दो बड़ी टीमें ब्राजील और अर्जेंटीना ही मुख्य हैं। इंग्लैंड की टीम को ग्रुप में शीर्ष पर रहने का सबसे बड़ा फायदा मिला है। अगर इंग्लैंड अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहता है तो उसे स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीमों के सामने आना पड़ेगा, लेकिन अब उसका सामना कांगो से होगा और उसके बाद मेक्सिको से उसका मुकाबला हो सकता है। इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे अपने स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में। अब फीफा विश्व कप 2026 की खबरों से इतर क्रिकेट की खबर को लेते हैं, और क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए बुरी खबर है। T20 महिला विश्व कप में भी और आयरलैंड और टीम इंडिया का जो T20 का श्रृंखला खेला गया उसमें भी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 विश्व कप के करो या मरो वाले अंतिम ग्रुप मुकाबले में रविवार को एलिस पेरी और एसले गार्डनर ने भारतीय पेस और स्पिन आक्रमण की पूरी तरह से बखिया उधेड़ दी और भारत को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस दिल तोड़ने वाली हार के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट से अब बाहर हो गई है। ग्रुप 1 से गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 5 जीत और दक्षिण अफ्रीका 4 जीत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुकाबले में पेरी ने 56 और गार्डनर ने नाबाद 53 रन की तूफानी पारियां खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 100 रन के मैच जिताऊ साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य 19 ओवर में ही 4 विकेट पर 172 रन बनाकर दिला दिया। एक समय 68 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय गेंदबाज दबाव बनाए हुई थी, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ फ्रंट फुट पर आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर से उछाला, जबकि शॉर्ट गेंदों पर पुल और कट शॉट खेलकर रनगति लगातार ऊंची रखी। इसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। चूंकि ये दोनों खिलाड़ी जिन्होंने भारत के विरुद्ध बेहतरीन प्रदर्शन किया है ये वुमेन प्रीमियर लीग में खेलती हैं और उसका जबरदस्त फायदा मिला, और भारत की कमजोरियों को बखूबी उन्हें मालूम होता है और उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने भारतीय टीम को बाहर कर दिया। इससे पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर 56 के बल्ले से निकले इनसाइड आउट कवर ड्राइव, पावर हिटिंग व लंबे छक्के भी भारतीय उम्मीदें टूटने से भारत को नहीं बचा सके। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनो के अंतिम ओवर में 3 छक्के जड़कर मैच का रुख बदलने की कोशिश की। पहला छक्का 85 मीटर लंबा था, जिसे उन्हें आगे बढ़कर स्टंप्स लाइन की फुलर लेंथ गेंद पर सीधा साइट स्क्रीन की दिशा में भेजा। हरमन ने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो महिला T20 विश्व कप में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है। अंतिम ओवर में भारत ने 23 रन बटोरे, हरमन इसी ओवर में आउट हो गई। इससे पहले स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 66 महत्वपूर्ण रन जोड़े थे। और अब बात कर लेते हैं T20 पुरुष टीम की। राजस्थान के टोंक में जन्मे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जय मुंद्रा ने रविवार को वह कर दिखाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां, भारतीय पासपोर्ट रखने वाले इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने विश्व चैंपियन भारत के स्टार बल्लेबाजी की कमर तोड़ते हुए आयरलैंड को इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिला दी। आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ कोई द्विपक्षीय T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीती है। मुंद्रा ने 3 विकेट झटककर भारत को 155 रन के लक्ष्य के जवाब में 153 रन 9 विकेट पर रोक दिया और आयरलैंड ने 1 रन से रोमांचक जीत के साथ T20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। मुंद्रा 32 रन देकर 3 विकेट ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन और 3 गेंद बाद अभिषेक शर्मा को गोल्डन डक पर आउट कर भारत को शुरुआती झटका दिया। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट लेकर भारत को
19 रन के अंतराल में 3 विकेट के संकट में पूरी तरह से धकेल दिया। तिलक वर्मा 55 ने संघर्ष किया, जबकि अंत में हर्षित राणा ने 10 गन में 21 रन बनाकर उम्मीद जगाई, लेकिन टीम लक्ष्य से 1 रन दूर रह गई। इससे पहले हरी ट्रैक्टर 53 और बेन कैलेट 37-37 की पारियों की बदौलत आयरलैंड ने 154 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। भारतीय टीम के लिए पदार्पण मैच खेल रहे प्रिंस ने 3 विकेट लिए, जबकि शिवम दुबे और अर्षदीप सिंह ने 2-2 विकेट झटके। लेकिन बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारत को यहां पर आयरलैंड के विरुद्ध हार झेलनी पड़ी है। इधर देवदत्त पड्डीकल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ा। हालांकि रविवार की खराब मौसम से भारत ए के साथ उसका पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच चौथे और अंतिम दिन ड्रॉ पर समाप्त हुआ। सीरीज का दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच 2 से 5 जुलाई तक कहीं खेला जाएगा। भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट 48 रन से आगे खेलना शुरू किया। पड्डीकल ने 101 गेंद में 67 रन बनाए। भारत ए ने 8 विकेट पर 189 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। श्रीलंका ए को 312 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में उसने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 70 रन बनाए। बारिश से खेल काफी देर तक रुका रहा, उसके बाद मैच समाप्त करने का फैसला किया गया। और अब बात क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए जो अच्छी खबर लेकर आया उसकी, यानी हॉकी की बात हम कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रो लीग का अंत किया जीत के साथ। उसने रविवार को पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। निर्धारित समय में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। पेनल्टी शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शीलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल किए। इंग्लैंड के लिए वालेस जैकरी और गुडफील्ड डेविड ही गेंद को गोल पोस्ट में भेज पाए। इंग्लैंड ने शुरुआत में गोल का मौका बनाया, पर भारतीय गोलकीपर मोहित ने शानदार बचाव किया। मैदान पर तनाव भी देखने को मिला। इस मैच में 2 अंक के साथ भारत के 16 मैचों में 19 अंक हो गए। वह 8वें स्थान पर रहा। स्पेन के भी उतने ही अंक थे, लेकिन वह एक स्थान आगे रहा क्योंकि उसने भारत के 4 के मुकाबले 5 मैच जीते हैं। पाकिस्तान बिना कोई मैच जीते 9वें और आखिरी स्थान पर रहा। बेल्जियम की टीम ने हॉकी प्रो लीग चैंपियनशिप जीत ली है। शनिवार की रात उसने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर 1 मैच शेष रहते खिताब पक्का कर लिया। इसके साथ ही उसने लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों का कोटा भी हासिल कर लिया। इसके साथ बेल्जियम ओलंपिक में जगह पक्की करने वाली पहली पुरुष टीम बन गई है। बेल्जियम के लिए अलेक्जेंडर हेनरिक्स और टॉम बून ने गोल किए। नीदरलैंड्स का गोल टीजमैन रेयांगा ने किया। और अब बात कर लेते हैं मनिका बत्रा की। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने एशियाई खेलों की टीम चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए TTFI पर अपने ही संविधान के उल्लंघन का बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि 7 सदस्य सीमा के बजाय 9 सदस्य चयन समिति ने टीम चुनी है। हालांकि महासंघ ने चयन के नियमों को अनुरूप बताया। मुख्य टीम में जगह नहीं मिलने के बाद मनिका ने कहा है कि वह इस लड़ाई में मानसिक रूप से थक चुके हैं और अब इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उन्होंने चुनी टीम को शुभकामना देते अपना ध्यान अमेरिका में चल रहे टूर्नामेंट पर केंद्रित करने की बात कही है, लेकिन इस बात से उन्होंने ये जता दिया कि वो इस बात को लेकर के काफी दुखी हैं और उन्हें काफी पीड़ा पहुंची है। नीरज की बात कर लेते हैं। भारतीय भाला फेंक के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा सितंबर अक्टूबर में जापान में होने वाली एशियाई खेलों में अपना खिताब का बचाव करने उतरेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की चयन समिति के अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने शनिवार को इस बात की पुष्टि कर दी है। चोपड़ा पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट से उबर गए हैं। उन्होंने हाल में दोहा डायमंड लीग से अपने सत्र की शुरुआत की और 4th स्थान हासिल किया। चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने की पुष्टि तो कर दी थी, पर यह स्पष्ट नहीं किया था कि एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे या नहीं। सुमरीवाला ने कहा कि चोपड़ा राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल दोनों में भाग लेंगे। उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और वह चोट से पूरी तरह से उबरने की प्रक्रिया में हैं। हॉकी के मैदान से ही बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान की टीम को भारत ने बहुत शानदार तरीके से पराजित किया, 7-1 से हरा दिया। उसकी खबर एक बार बात कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गेंद पर बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए FIH प्रो लीग के लंदन चरण के दूसरे मैच में पिछड़ने के बाद पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी है। शुक्रवार की रात खेले गए मैच में मिडफील्डर हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तेज शुरुआत में मनदीप सिंह के शानदार प्रदर्शन से भारत को 90 सेकंड के भीतर ही पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, पर गोल नहीं हो सका। पाकिस्तान को 3 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला। भारत ने वीडियो रेफरल लिया, लेकिन फैसला उसके पक्ष में नहीं गया। इस तरह पाकिस्तान के कप्तान अबू बकर महमूद ने ड्रैग फ्लिक से गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। भारत ने उसके बाद शानदार वापसी करते हुए गोलों की बारिश कर दी। सुखजीत सिंह 20वें, हरमनप्रीत सिंह 26वें, हार्दिक सिंह 34वें, युवराज सिंह 35वें, अभिषेक 41वें, राजकुमार पाल 44वें और दिलप्रीत सिंह 54वें ने गोल दागे। भारतीय टीम 15 मैचों के बाद 4 जीत 7 हार और 4 ड्रॉ से कुल 17 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। दूसरी ओर 15 मैच में पाकिस्तान को एक भी जीत नहीं मिली है और टीम बिना खाता खोले फिलहाल 9वें और आखिरी स्थान पर है।
हालांकि पेनल्टी पर गोल में भारत को बहुत सफलता अब तक नहीं मिली। टीम को 13 पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन 3 पर ही गोल कर सके। 1 गोल पेनल्टी स्ट्रोक पर हुआ जबकि 3 मैदानी थे। अब भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। अब बात कर लेते हैं लक्ष्य सेन की। तो लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा मंगलवार से शुरू हो रहे यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य पहले ही दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से भिड़ेंगे। किदांबी श्रीकांत का सामना चीनी ताइपेई के लियाओ झुओ फू से होगा। महिला एकल में तन्वी जर्मनी की यवना ली का सामना करेंगी। देविका सिहाग का पेरू की इनेस कैस्टिलो सालाजार और अनमोल खरब का बुल्गारिया की कालोयाना नलमंगतोजा से होगा। इधर बात कर लेते हैं सुथार की। भारत के युवा स्पिनर मानव सुथार ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में समरसेट के खिलाफ वार्विकशायर के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में 7 विकेट झटके। उन्होंने दूसरी पारी में 5 और पहली पारी में 2 विकेट लिए। इससे पहले यॉर्कशायर के खिलाफ पदार्पण मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट पदार्पण मैच में 10 विकेट लेने वाले सुथार ने 2 काउंटी मैचों में कुल 11 विकेट अपने नाम किए हैं। समरसेट ने उनकी टीम वार्विकशायर के आगे जीत के लिए 314 रनों का लक्ष्य रखा है। ये तो थी खेल जगत की ताजा तरीन खबरें माननीय मित्र स्तंभ खेल गतिविधियां में। और श्रोताओं, हम आपको ले चलते अपने अगले स्तंभ खेल जगत के रोचक खबरों की तरफ।

खेल जगत के रोचक खबरों में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल में टेनिस कोर्ट पर महिला युगल से वापसी करने वाली सेरेना विलियम्स अब 44 वर्ष की उम्र में विंबलडन के महिला एकल में जलवा दिखाएंगी। पिछले 3 सप्ताह से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन

सेरेना विंबलडन के एकल में खेलेगी, तो इस पर ऑल इंग्लैंड क्लब ने इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के शुरू होने से 8 दिन पहले कहा। सेरेना को महिला एकल वर्ग में अंतिम वाइल्ड कार्ड दिया गया है। सेरेना विंबलडन में एकल और युगल दोनों में खेलेंगी। विंबलडन ने महिला एकल में अंतिम वाइल्ड कार्ड को तब तक बचाए रखा था जब तक सेरेना ने फैसला नहीं कर लिया। और अब बात बेन स्टोक्स की। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। इंग्लैंड टीम ने टेस्ट के चौथे दिन के खेल के बीच में यह जानकारी दी है। इसके साथ ही स्टोक्स के 15 साल के करियर पर विराम लग जाएगा, जिसमें वह 2019 वनडे विश्व कप का फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे हैं। वह T20 विश्व कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी अहम सदस्य थे और उसी साल टेस्ट के कप्तान बने थे। पहले टेस्ट के बाद रात को बाहर रहने के लिए अनुशासनात्मक कारणों से उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया था। ये तो थी खेल जगत की रोचक खबरें, और श्रोताओं आप कॉलेज अपने अगले स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में।

स्पोर्ट्स कॉर्नर श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो स्पोर्ट्स कॉर्नर में हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिनके सभी नॉकआउट मुकाबले अब तय हो गए हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे भारत आयरलैंड T20 क्रिकेट श्रृंखला में जिस तरह से भारतीय टीम बैकफुट पर होते हुए आयरलैंड जैसी टीम से 2-0 से हार गई श्रृंखला को, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। लेकिन शुरुआत तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 से ही करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में अभी फुटबॉल का बुखार चरम पर है। जो नॉकआउट के मुकाबले हैं वो अब तय हो गए हैं। सबसे पहले नॉकआउट मुकाबलों का जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 29 जून यानी आज मुकाबला होगा ब्राजील बनाम जापान, देर रात खेला जाएगा, और 30 जून को यानी कल मुकाबला होगा जर्मनी पराग्वे के विरुद्ध भिड़ेगा। 30 जून को ही नीदरलैंड्स मोरक्को के सामने होगी, जबकि 30 जून को दूसरा मुकाबला आइवरी कोस्ट बनाम नॉर्वे होगा। 1 जुलाई को फ्रांस भिड़ेगा स्वीडन से। 1 जुलाई को ही मेक्सिको इक्वाडोर के विरुद्ध खेलेगा, जबकि 1 जुलाई को ही इंग्लैंड का मुकाबला होगा DR कांगो से। 2 जुलाई को बेल्जियम खेलेगा सेनेगल से, जबकि 2 जुलाई को अगला मुकाबला अमेरिका बनाम बोस्निया होगा। 3 जुलाई को स्पेन भिड़ेगा ऑस्ट्रिया से। 3 जुलाई को ही पुर्तगाल और क्रोएशिया का मुकाबला होगा, जो बहुत अहम और बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। 3 जुलाई को एक और मुकाबला स्विट्जरलैंड अल्जीरिया के विरुद्ध। वहीं 3 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया खेलेगा मिस्र से, और 4 जुलाई को अर्जेंटीना बनाम केप वर्डे, और 4 जुलाई को ही कोलंबिया घाना के साथ मुकाबला होगा। उसके आगे के मुकाबले होंगे राउंड ऑफ जो 16 के मुकाबले होंगे वो 4 से 7 जुलाई तक चलेंगे। क्वार्टर फाइनल 9 से 11 जुलाई तक खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 14 जुलाई को आर्लिंगटन में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 15 जुलाई को अटलांटा में। तीसरे स्थान के लिए जो मुकाबला होगा वो 18 जुलाई को मियामी गार्डन्स में खेला जाएगा, और फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को ईस्ट रदरफोर्ड में खेला जाएगा। ये मुकाबले हैं, ये नॉकआउट मुकाबलों का कार्यक्रम है, और बाईं तरफ की टीम जो भिड़ेगी सबसे मजबूत टीमों का आपस में ही यहीं पर जो नॉकआउट के मुकाबले यहीं पर फैसला हो जाएगा। तो इसलिए अब दाईं तरफ जो टीम है उनको बहुत एज मिला है, और उसमें अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीम बहुत लकी है, क्योंकि वो दोनों दाईं तरफ की टीम है और बहुत ही अपने से कमजोर टीमों के साथ उनका मुकाबला नॉकआउट में होगा, तो अगले दौर में पहुंचने की उनकी संभावना बहुत प्रबल है। मेसी के बात अगर हम कर लेते हैं, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने रविवार को जब सुबह जॉर्डन को 3-1 से हराकर ग्रुप चरण के तीनों मैच जीत लिए, इस मैच में 39 वर्षीय मेसी दूसरे हाफ में उतरे। 60वें मिनट में मेसी ने जैसे ही मैदान में कदम रखा AT&T स्टेडियम के शोर चरम पर पहुंच गए। तब अर्जेंटीना 2-1 से आगे थी। मेसी ने दर्शकों को निराश नहीं किया और 80वें मिनट में बॉक्स के बाहर से फ्री किक पर गोल दागकर अपना जादू लोगों को दिखा दिया कि 10 नंबर की जर्सी में मेसी क्या कमाल कर सकते हैं। इससे पहले चेल्सी ने 19वें मिनट में फ्री किक पर खाता खोला, जबकि मार्टिनेज ने 31वें मिनट में पेनल्टी से बढ़त दोगुनी कर दी, और जॉर्डन के लिए मुसल अल्तमारी ने एक गोल किया। कीर्तिमान की बात कर लें तो लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनल मेसी। विश्व कप में 19वां गोल दागकर अपना रिकॉर्ड और बेहतर किया है। 5वीं बार अर्जेंटीना ने विश्व कप के ग्रुप के सभी मैच जीते। पिछले 9 विश्व कप मैचों में अर्जेंटीना की 7 जीत 2 ड्रॉ रही है। विश्व कप में पहली बार मेसी ने बतौर सब्स्टिट्यूट गोल दागा है। मेसी और रोनाल्डो के महामुकाबले का सपना देख रहे दर्शकों के लिए एक खबर ये बुरी है कि ये दिग्गज अब फाइनल में ही आमने सामने आ सकते हैं, जो

बेहद मुश्किल दिख रहा है। पुर्तगाल के ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने से दोनों को संभावित क्वार्टर फाइनल टक्कर का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं अब रोनाल्डो की बात कर लेते तो

11 बार ऑफसाइड हुए हैं। फ्रांस के एम्बापे और कोलंबिया के लुइस डियाज 7-7 ऑफसाइड के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अब इधर बात कर लेते हैं हैरी केन 11वां गोल करते ही इंग्लैंड की ओर से विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने गैरी लाइनर को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में पनामा को 2-0 से हरा दिया। विश्व कप में इंग्लैंड की टीम लगातार दूसरी बार ग्रुप में शीर्ष पर रही। बुकायो साका कॉर्नर किक पर बेलिंगहम ने 62 मिनट में ही लायंस को बढ़त दिला दी। यह विश्व कप में का तीसरा और मौजूदा टूर्नामेंट का दूसरा गोल था। इसके 5 मिनट बाद केन ने हेडर से गोल किया। उनका यह 42वां अंतर्राष्ट्रीय गोल है। पनामा पिछले 16 साल में ग्रुप चरण में कोई गोल नहीं करने वाली पहली टीम बन गई है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था कि रोनाल्डो और मेसी का मुकाबला लोगों को देखने को मिलेगा, तो अब मेसी और रोनाल्डो का मुकाबला अगर फाइनल में दोनों टीमें पहुंचती हैं तभी मुकाबला हो सकता है, वरना उससे पहले इन दोनों टीमों का मुकाबला होना संभव नहीं है। वैसे अगर बात करें तो अर्जेंटीना की किस्मत इस बार बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें उनका मुकाबला पड़ा है नॉकआउट के चरण में, तो 16 में पहुंचना, राउंड ऑफ 16 में वो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड भी टीम बहुत आसानी से पहुंच जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ ब्राजील, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इन सबों का मैच, फ्रांस, ये सब, मेक्सिको, इन सब का मैच बहुत मजबूत टीमों से है और नॉकआउट में ही, और कोई ना कोई एक बहुत अच्छी टीम हार करके बाहर हो जाएगी तो एक टीम ही बचेगी। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि मेसी की किस्मत एक बार फिर से अपने चरम पर है, और मेसी ने जिस तरह से अपने खेल और कला का प्रदर्शन किया है वो दर्शाता है कि मेसी कितने महान खिलाड़ी हैं। और जब अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना डिएगो माराडोना की उस विरासत को मेसी बढ़ा रहे हैं आगे, और पूरे विश्व में उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसको लेकर के मेसी ने अपने आप को प्रूव किया है, साबित किया। अब आने वाले जो मुकाबले होंगे उसमें अब मेसी के और करिश्मे का लोगों का इंतजार होगा, और मेसी किस तरह से इस विश्व कप में कितना और गोल कर पाते हैं ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब नॉकआउट के मुकाबले खेले जाएंगे, इसके बाद राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू होंगे जो 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच खेले जाएंगे, तो वो भी बहुत अहम होगा। सबकी निगाहें होंगी ब्राजील पर, जर्मनी पर, नीदरलैंड्स पर, फ्रांस को लेकर के, और साथ ही साथ अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के अलावा अगर हम बात कर लें तो उनके साथ साथ कोलंबिया पर। ये तमाम टीमें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ परिणाम होगा, और साथ ही साथ पुर्तगाल को लेकर के भी कि पुर्तगाल का किस तरह से प्रदर्शन रहता है। बहरहाल अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे के आने वाले नॉकआउट के मुकाबलों के बाद कौन सी टीमें राउंड ऑफ 16 में पहुंचती है, तो हमारी भी नज़र बनी रहेगी उस पर। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आयरलैंड ने जिस तरह से टीम इंडिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो 10 साल में पहली जबकि कुल तीसरी बार भारतीय टीम एक रन से हारी है। इससे पहले 2016 में वेस्टइंडीज और 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा हुआ था, लेकिन जिस तरह से आयरलैंड की टीम ने भारतीय टीम को 2-0 से पराजित कर दिया है, कई सवाल खड़े होते हैं। और पहली बार ही कप्तानी सौंपी गई थी श्रेयस अय्यर को, लेकिन श्रेयस अय्यर पूरी तरह से नाकाम रहे, विफल रहे। यहाँ पर संजू सैमसन की भी बात करनी होगी कि संजू सैमसन को भी मौका मिला, लेकिन संजू सैमसन उस मौके को भुना नहीं पाए। तो पता नहीं टीम में वो आगे रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये तो चयनकर्ता जाने, टीम के कप्तान जानेंगे और जो कोच हैं वो डिसाइड करेंगे। बहरहाल अभी इस श्रृंखला में आयरलैंड से टीम इंडिया जिस तरह से हारी है उसने कई सवाल खड़े किए हैं, और ये दर्शाता है कि जो विपक्षी टीम है आज के दौर में पूरे विश्व में T20 क्रिकेट में फॉर्मेट है, और IPL की जैसे शुरुआत हुई है तो वहाँ पर आप किसी भी टीम को कमतर नहीं आंक सकते, कोई भी टीम किसी भी टीम को कभी भी पराजित कर सकती है, खास करके T20 के मुकाबले में। ये बात आयरलैंड ने प्रूव कर दिया है, और आयरलैंड ने जब अपने घर में भारत की टीम को इस तरह से पटकनी दी है तो उनके लिए खुशी मनाने का ये बहुत बेहतरीन मौका है, अवसर है, क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर रही है। हालांकि भारत को कुछ अच्छे खिलाड़ी भी जरूर मिले, प्रिंस यादव को मौका मिला, उन्होंने 22 रन देकर कहीं 3 विकेट झटक लिए हैं, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की, हालांकि टीम को जीत नहीं दिला सके। हर्षित राणा ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की अंतिम वेट हंड्रेड्स के रूप में, लेकिन वे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा सब कुछ किया, खूब पढ़ाई आपने की, लेकिन परीक्षा में परिणाम अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो फिर आपकी वो सारी तैयारी, वो सारी पढ़ाई बेकार कही जाती है। तो वही कुछ परिणाम यहाँ पर भारत के लिए लेकर के आया, बहुत सोच समझ करके श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई थी आयरलैंड दौरे के लिए, लेकिन श्रेयस अय्यर पहले ही टेस्ट में फेल हो गए हैं, और T20 श्रृंखला में न केवल आयरलैंड, चूंकि बहुत भारत से अगर बात करें तो भारत के मुकाबले

बहुत निचले पायदान पर है, और उस स्टैंडर्ड की टीम अगर आपको T20 में 2-0 से हरा देती है, दो मुकाबले ही खेलने हैं और 2-0 से आपको हरा देती है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे, कप्तान पर भी खड़े होंगे और उनके साथ खिलाड़ी, जिस तरह से उन्होंने टीम का संयोजन किया और जिन खिलाड़ियों को मौका दिया, ये तमाम चीज़ें हैं कि अब भारतीय टीम को कैसे यहाँ से कम बैक करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल भारतीय टीम के लिए खबर तो बुरी है, साथ ही साथ T20 महिला विश्व कप की बात भी कर लें तो वहाँ भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जिस तरह से उस अहम मुकाबले में भारत की टीम को पराजित किया तो भारत के लिए सब उम्मीदें वहीं पर टूट गई। उसका एक बड़ा लाभ है कि महिला प्रीमियर लीग जो खेला जाता है भारत में IPL की तर्ज पे, तो उसमें जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी या विश्व के तमाम, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ये सभी खिलाड़ी जब खेलते हैं तो फिर उसका लाभ मिला इस T20 विश्व कप में, और हम ये समझते हैं कि भारत की जो कमजोरी है जिन खिलाड़ियों की, उस पर बखूबी काम किया उन्होंने और उस कमजोर नस को दबाते हुए भारत की टीम को पटकनी देते हुए सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम नहीं पहुँच सकी, सपना टूट गया। तो ये सब बुरी खबरें थी क्रिकेट के मैदान से, पुरुष टीम के लिए भी, महिला टीम के लिए भी, और हमारी नज़र इस पर भी बनी हुई है। साथ ही हमारी नज़र लगातार फीफा विश्व कप 2026 पर भी बनी हुई है। अगले सप्ताह जब हम आएंगे तो नॉकआउट के मुकाबले संपन्न होने के बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा 16 का, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के स्पोर्ट्स कॉर्नर में श्रोताओं इतना ही, अब हम आपको ले चलते वहां जहां लेते खेल गन की परीक्षा, हमारे सवाल आपके जवाब में। हमारे सवाल आपके जवाब में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है, अब तैयार बैठे हमारे सप्ताह के दो प्रश्न नोट करने के लिए, तो नोट कीजिए। हमारे सप्ताह का पहला प्रश्न है, किस खेल में स्क्रम शब्द का प्रयोग होता है? पहला प्रश्न एक बार फिर से, किस खेल में स्क्रम शब्द का प्रयोग होता है? हमारा दूसरा प्रश्न है, शतरंज में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन है? दूसरा प्रश्न एक बार फिर से, शतरंज में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन है? इन दोनों प्रश्नों को आपने नोट कर लिया, इसके सही हल 7 दिनों के अंदर अंदर हमें हमारे पते पर लिखकर भेजने। हमारा पता है, हमारे सवाल आपके जवाब, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 8120001। और आप हमें मेल से भी अपने सही जवाब भेज सकते, सोता हूं हमारा मेल एड्रेस है phirbhagalpur@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का, और बारी पिछले सप्ताह पूछे गए सवाल, सवाल के सही जवाब और सही जवाब भेजने श्रोताओं के नामों की। तो पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था, क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन थे? इसका सही जवाब है, इंग्लैंड के जिम लेकर 1956 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। हमारा दूसरा प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही जवाब है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इन दोनों प्रश्नों के सही सही जवाब आप श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, शकरुल्ला चक कवाली मैदान हुसैनाबाद, भागलपुर से शमशाद खान, अली खान, वली खान, मिस्टर खान, रुस्तम खान, आजम खान, अरबाज खान, अनस खान। मुजाहिदपुर प्रपटला भागलपुर से मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, कादिर, नूरुल्हुदा, जिशान अकरम व एम के नाज। मनिहारी मस्जिद लेन पुरपटोला से मजहर खान, फयाज खान, अनस खान, गुड़िया, नाहिद, पाकिजा और मुस्कान। बड़ी खंजरपुर मस्जिद लेन भागलपुर से भई गुलफराज आलम, बेगम समारा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली। मायागंज दुर्गास्थान बारी भागलपुर से संतोष यादव, आशीष दीपक। अकबरनगर सुल्तानगंज से अशोक कुमार गुप्ता, विनोद गुप्ता, आदर्श गुप्ता व रंजीत गुप्ता। पीरपैंती दो पुवारी टोला से मोहम्मद जली, संजीदा खातून व आसमीन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय आवासीय परिसर आशियाना दीघा रोड पटना से अरशान अहमद, जारिस वसी अहमद, नबा कौसर, साजली ममसी व शादाब अहमद। भीकनपुर भट्टा रोड विसर्य स्थान भागलपुर से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी व यशा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका वीरक, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक व हरदेव मीका। भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हुमायूं विश्वकर्मा व योगिता विश्वकर्मा। भीगनपुर चौक भागलपुर से सलाउद्दीन परवाज, जमाइशा खातून। आप सभी श्रोताओं को सही जवाब भेजने के लिए खेल खड़ी की ओर से ढेर सारी बधाइयां। और अब तो हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर हमारे आपकी मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए खेल खड़ी की पूरी टीम के साथ हमें यानी मिलिंद गुंजन को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलकूद पर आधारित खेल खिलाड़ी। प्रस्तुतकर्ता थे सरशार अहमद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक

0: गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने सामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण सिंचाई रेलवे सड़क बिजली स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and Senior Officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
8: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
9: On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeen, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During the visit, several MOUs and agreements in areas such as UPI, health agriculture, shipping, space cooperation, extradition and a line of credit were also exchanged between the two countries. With Aman's report, Aparajita Snatak, Akashwani News, Delhi.
7: Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the center's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last

0: बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयी बंगाल बिहार महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूले। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो MSME की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट MSMEs हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ MSMEs के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें MSME का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।

0: एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले
1: जी
0: इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं,
1: जी
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है,
1: जी
0: 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी,
1: दी है
0: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें
1: जी
0: देनी थी। और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं।
1: दी
0: तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल
1: जी
0: एंटरप्राइजेज हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त
1: उपलब्ध
0: हो
1: हो
0: सके।
1: जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा
0: जी
1: कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता
0: इसमें
1: है।
0: दो बातें मैं और बताना चाहूँगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो
1: जी
0: 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है, तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है।
1: जी
0: तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे
1: जी
0: बढ़ावा दे रहे
1: जी
0: हैं।
1: बूस्टअप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, जो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी
0: आपने जो प्रश्न पूछा, इसके दो भाग हैं।
1: जी
0: पहला, ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है।
1: करनी हो।
0: और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज़ जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं, तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं। तो उस

0: योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी हाँ बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।
1: जी हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME की लोन लेना चाहते हैं तो कितने परसेंट उसमें ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है, पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं, और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: जी मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या

0: नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए, थैंक यू।
1: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियाँ हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
2: जी, हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
2: जी नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं अगर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं।
1: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मेरा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
2: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
1: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमई हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
2: और
1: है।
2: अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
1: देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स, तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
2: जी।
1: वो भी काफ़ी सख्त है, तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चलें, तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
2: जी। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
4: संजीव मैडम जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक, और मिनिमम वेज में कितने निर्धारित करी गई है जी, और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ के जो मजदूर काम करते हैं इनमें और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं।
1: देखिए जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
2: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
2: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
5: जी
2: नमस्कार, सवाल पूछे।
5: ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
1: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं, और हमारे MSMEs जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर दी लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि MSMEs की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
2: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
6: हेलो
2: जी, हाँ अपना सवाल पूछे।
6: हाँ नमस्ते मैडम
2: जी।
6: हेलो
2: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
6: एक्चुअली में हमारा ना बुटीक है
2: जी
6: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
1: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
2: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
1: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है, और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये 2 पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
2: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
1: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
2: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था, 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था, 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूलकिट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
2: जी, तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: धन्यवाद प्रियंका जी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में
8: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए शाहिद परवेज का सितार वादन राग झिंझोटी में।

शास्त्र संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शाहिद परवेज का सितार वादन राग झिंझोटी में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म कॉकटेल के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने। लाल माता सुदामा नगर रतलाई राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी, मुंदीचक भागलपुर से, विशाल कुमार, ऋतिक रोशन, डोलू बैजानी चौबेटोला से, वर्षा वंदना कन्हैया, मेघा शालू, निहाल साक्षी, पवन सोनी, नीलू मितु ईशु और अन्नू ने।

पसंद आपकी में अगला गीत फिल्म सिटी लाइट से हमने लिया है। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, गीत के बोल लिखे हैं रश्मि सिंह ने और संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने मुजाहिदपुर पूरब टोला से राजू खान, जहांगीर खान, शबनम जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरबाज खान, अयाज खान और महमूदा खातून ने। ज़िला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गो, प्रेम गो, प्यारी बहने संगीता, लिपि और दीपाली ने। बड़ी गोविंदपुर जमालपुर मुंगेर से मुकेश कुमार, परवीन, बबलू, राजेश, जितेंद्र, जीवन, मनोज, दीपक, विवेक, मनोहर, अनिल, हिमांशु, कौशल, विजय, प्रफुल्ल, मोहन, राहुल, विकास, रोमन और हितेश ने।

अगला गीत सुने सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत दिया है उषार और शेखर ने। इस गीत को अपनी आवाज़ सनम पुरी के साथ साथ चिन्मयी श्रीपदा ने भी दी है और साथ में शिप्रा गोयल हैं। फिल्म का नाम है हंसी तो फंसी और इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने। उत्तम नगर नई दिल्ली से मानसी, अनिल, गौरव और कविता मदान ने। गोराडी भागलपुर से डॉक्टर हेमंत कुमार, आनंद प्रियदर्शी और नीलेश प्रियदर्शी ने। संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी गोटके, गायत्री गोटके और यज्ञेश गोटके ने। बड़ी खंजरपुर भागलपुर से गुलफराज आलम और जमालुद्दीन नेपाली ने। वहीं जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनू, मोनू, गौरव और नीतीश ने।

कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म जन्नत से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है केके ने। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने मोहल्ला ततारपुर भागलपुर से नबा कौसर, अरशान अहमद, जरीश अहमद, हाजिक अहमद, सुमरान, शफक, शाजली, सुमी और शगुफ्ता ने। लुत्फ अली लेन मोहल्ला काजुली चक से फजैल, नसीम रोज़, सुमेरा, शहरीन, फैसल नसीम, शादान, सिमरा, सिद्रा, जोया अनम ने। मोहल्ला ततारपुर भागलपुर से अरशान अहमद, जरीश वसी अहमद, शादाब अहमद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय आवासीय परिसर आशा नदीगा रोड से, भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से रामकुपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमायूं योगिता विश्वकर्मा, सुदामा नगर रतलाई से आदित्य भार्गव और उनके परिवार के सभी लोगों ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में फिल्म लूडो से सुने गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने और गीत के बोल लिखे हैं संदीप श्रीवास्तव ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने बीकनपुर बट्टा रोड से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव, यामिनी और यशा ने, बांका से रमेश शाह और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने, चंपानगर से शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर, तारिक अनवर, कटोरिया से शहादत अली, सालिक शहादत, सिद्रा शहादत और शाहिना परवीन ने।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2.